ऐं एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस: रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3385-69।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्निकरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180000।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372-26-0100।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी
2: यार फोरी हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब पर ते पब्लिसिटी कराई।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज़ अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

0: मुसलसल राब्ते में आहिनि।
1: अमरीका सां सिंधियुनि ॻाल्हियुनि जो को बि मनसूबो न आहे। ईरानी नायब परॾेही वज़ीर काज़िम ग़रीब आबादीअ चयो आहे त वाइदनि ते अमलदार आमद लाइ कतर सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। टीमुनि विच में ॻाल्हियुनि जी हिन वक़्त ताईं तसदीक न थी सघी आहे। टेक्निकल सतह ते ॻाल्हियुनि जूं हालतूं ठीक थियण ताईं तारीख़ ऐं जॻह ते साल्स मुल्कनि सां मुशावरत जो सिलसिलो जारी। आबना हरमज़ाबाद ईरान ऐं ओमान जी कमेटी बि गॾिजाणीअ ते बाबति मुशावरत कई वई।
0: ईरान कतर में मंजमंद कयल 12 अरब डॉलर्स जी ईरानी असासनि मां 6 अरब डॉलर्स जारी करण जो मुतालबो करे छॾियो। ईरानी सदर मसूद पशकियान जो चवणु हो त कतर में मौजूद ईरान जे 12 अरब डॉलर्स मां 6 अरब डॉलर्स जारी थियण घुर्जनि। ईरानी सुमनाईअ जे सलाहकार अली अकबर विलायती चयो आहे त बहरीन खे ख़बरदार कयूं था त पंहिंजी हदनि में रहे, पंहिंजे मुस्तक़बिल सां रांदि न खेॾे, ईरान खे सख़्त फ़ैसिलो करण ते मजबूर न कयो वञे।
1: वज़ीर आज़म पारां क़ौमी ज़रई पॉलिसी जल जोड़ ऐं ज़रई शोबे में एपेक्स फोरम क़ाइमु करण जी हिदायत। वज़ीर आज़म जी हिदायत हेठि वज़ारत तफ़ुज़ ऐं ज़रई शोबे में सुधारनि बाबति अहम इजलास थियो। वज़ीर आज़म सूबनि जे मशावरत सां क़ौमी ज़रई पॉलिसी जल जोड़ जो शोबो जटादर मुआशी तरक़ीअ में अहम किरदारु अदा करे सघे थो। AI जी मदद सां बि ज़रई शोबे खे बहितर बणाए सघिजे थो।
0: नरेंद्र मोदी पाकिस्तान मथां आबी दहशतगर्दी करणु चाहे थो। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल चई चुका आहिनि त पाणी बका जो मामिलो आहे, रंडक क़बूल न कई वेंदी। सिबसमा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारड़ चयो आहे त सिंतास मुआहिदे खे मुअतल नथो करे सघिजे। सिंतास मुआहिदे बाबति दुनिया पाकिस्तान जो मौक़िफ़ तस्लीम कयो। वफ़ाक़ी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक चयो त पाकिस्तान पंहिंजी पाणी तरफ़ वधंदड़ हर हथ कटे छॾींदो, पाणीअ ते धाड़ो बर्दाश्त न कयो वेंदो।
1: सेनेट जे घरू मामलनि बाबति सब कमेटीअ जे इजलास में कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकीअ जो ज़िक्र। DIG साउथ कराची असद रज़ा पारां कमेटीअ खे पिंकीअ केस बाबति ब्रीफिंग। कमेटी चेयरमैन सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो चयो त पिंकी सिंध में रहे त खेसि कुझु न थींदो, ईंदड़ साल पिंकीअ खे सदारती अवार्ड मिली वेंदो। अनमोल और पिंकीअ खे त वज़ीर आज़म खां बि वधीक प्रोटोकॉल ॾिनो पियो वञे। पतो लॻायो वञे त पिंकीअ जे पोयां केरु आहे।
0: हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे नतीजनि में मुबैना बेज़ाब्तगिन ऐं पंहिंजा नवाज़ी ख़िलाफ़ मुतासिर उमेदवारनि ऐं शागिर्दनि जो احتجاجی مارچ ऐं धरणो। सिंध पब्लिक सर्विस

0: भी मदद न करे सानो कोई भी मदद न करे तई अल्लाह जे वास्ते मैं एसपी के अपील दी गया मुझे भाई के माजिया बगरे
1: असा ये धिका खाई खाई ना असि हुकूमत मदद करे थी रोड ते वेठी लाशारी कौम के जगण के लिए सुतल लाशारी कौम सरदार असो सुतल हाँ मत जागे असा के जेस तक पे बच्चो न मिलो अस इत वेठा होंदे
2: फरवरी को स्कूल वही है रस्ते में अगवाती वही है खंडी वही है असा के सिखारदा न असा इन पंज महीनों में असा कानून जो के सब दरवाजा खटकाया असा तो कें न बुधी असा के हुकूमत ये मुतालबा खुदा दार असा न्याणी के वाजियाब कर असा के दें असा इन कुछ भी ना घूरू अगर ये बचड़ी वार अगर इन औलाद वारा तो ये औलाद जो दर्द समझन तो असा न्याणी अत बदे जन कुरान भी सदके इमामन भी सदके न्याणी असि वाजियाब कराए असा के दें
3: जैसे बचड़ा न दिना वा असों को अस बिजली के सब जो सूर उ बचा तो असापस
4: सिंध में अगवा थियल प्रिया कुमारी उजाला परवीन समेत बेन बार बाजियाबी लाए बबरलो बायपास में चौथे दिन एहतजाजी कैंप जारी प्रिया कुमारी एक्शन कमेटी तरफा लगल एहतजाजी कैंप में इलाके वासी सियासी समाजी अगवाण की शिरकत प्रिया कुमारी उजाला परवीन नवीद लाचारी सबा कलोड़ो फातिमा तीवड़ो ए बेन बार बाजियाबी तहतजाज जारी रखने जो ऐलान सिंध में अगवा थियल समूरन बार बाजियाब कराने जो मुतालबो
5: राधन वट सिदराबाद हथियारबंदन विच में मुबैना मुकाबलो फायरिंग की डे वट दौरान पीरसन वजीर सोलंगी गोली लगन सब मारजी वयो सीटीडी पुलिस हैदराबाद हथियारबंदन विच में स्टेशन वेझो फायरिंग की डे वट थी एसएसपी दादू चयो आहे त हथियारबंदन पुलिस ते हमलो कयो आहे
4: कराची के कोरंगी वाले इलाके में औरत ते मुबैना तौर पाड़ेसरी जो तेजाब हमलो मुबैना तेजाब हमले में जख्मी थियल औरत किरण खान अस्पताल दाखिल मुतासिर औरत चयो आहे त अली नाले पाड़ेसरी घणे अरसे का तंग कंदो हो डोह में जवाबदार जे घरवारी भी मुलविस आए पुलिस केस दाखिल न करे रही।
6: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
7: खुशखबरी हानी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 0385-569-0300-003-8559-69
8: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहराबपुर राब्ते जे लाइ 0320 1800003

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है होंडा कंपनी जा तम स्पेयर मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट

0: कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जहर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ति जिलाई आसिम हुसैन आराई 03073592120।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारन जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 0301 91 896

0: ಗಾರ್ಡನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹಾಲಾಣಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಡಿಪೋ ಅ ನೇಮ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್
1: ಸರಿಯಾ ಗಾರ್ಡನ್ ಟಿಯರ್ ಎಂಗಲ್ ಚೇನಲ್ ಪಟ್ಟಿ ಲೋಹಿ ದರವಾಜಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಜಾ ಚೌಂಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇತಿ ಕ್ರೇಶ್ ಐ ರಂಗ ವಗೈರಾ ಬಾಜ಼ಾರ್ ಕಾ ಬಾರಿಯ ದಸ್ತಿಯಾಬ್ ಆಹಿನ್
0: ಹಾಣೆ ಯಚು ಮೆಹರಾನ್ ಐರನ್ ಸ್ಟೋರ್ ನಜ್ದ ಬಲೋಚ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಹಾಲಾಣಿ
1: ರಾಬ್ತೆ ಲಾಯ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಗುಲಾಮ್ ನಬಿ ಮುಗಲ್ 03-220-4372 ಐ 02-42-46-0100
2: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03-00-00-27-234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03-01-38-65-453
4: अस्सलाम वालेकुम अदा
5: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
5: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 03-01-399-2836
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

कतर जी शहर दोहा में अमेरिका ए ईरान जे नुमाइंदन विच में आज मुलाकात थींदी या न अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पारां बिनी मुल्कन जे नुमाइंदन विच में आज मुलाकात थियण जी दावा ईरान जो इनकार सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान सां हलंदड़ हफ़्ते थींदड़ कतर में थींदड़ इजलास अहम साबित थी सघे थो ईरान न रखण ते बि राज़ी आहे मुफ़ाहमत ॿतरफ़ो मामिलो आहे अमेरिका मुआहिदे ते अमल कंदो त असां बि पंहिंजूं ज़िमेवारियूं पूरियूं कंदासीं ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियान चयो आहे त हा

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाकी तमाम पखन जे मुकाबले में ये जबरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का।
1: सन क्रॉप ग्रुप का
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
4: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
5: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000।
6: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खा इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खा रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ
7: 83004 ही हले थो। मो पंहिंजो दुकान खोलियो त एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
8: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

ओके जी, प्रोग्राम में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तीन तरीकाकार से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, एस के आर टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 8881 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज होगा जो कि आप लोग सर्च कर सकते हैं जी GFM88 के नाम से. और GFM88 के नाम से जब आप ये सर्च करेंगे तो आपको हमारा पेज मिलेगा. देन वहां पे आपको पोस्ट मिलेगी, पोस्ट जिंदगी गुलजार है कि उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं. और साथ साथ आप लोग मुझे कॉल भी कर पाएंगे. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488, जिसके ऊपर कॉल करेंगे. कॉल करने के बाद मुझसे बात करेंगे, ठीक है. गाना सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है.

0: 5-HT3 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

हलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियो ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301 91 896।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ति जिलाई आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: Anna.
1: करी छोड़ी।
0: ये अलिया कुमार रिंदे
1: किसका गाना है?
0: ये अलिया कुमार रिंदे के आवाज में शायरी मेरी है।
1: ओके, मैं इसको सर्च करती हूँ जी।
0: मिल जाएगा।
1: ओके, और कुछ कहेंगे?
0: अल्लाह आपको खुश रखते तो आपका प्रोग्राम सुनते हमारा दिल खुश हो जाते हैं। आप हमारी कॉल भी शामिल करते हैं, मैसेज भी शामिल करते हैं मेरे पास।
1: ओके, ये किसका गाना बताया आपने? चलेंगे जी, मैं बिल्कुल सर्च कर रही हूँ जी। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनिया जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैम सागर बात कर रहा हूँ।
0: सागर भाई, आवाज आ रही है?
1: पहचान लेती आज नहीं पहचान?
0: आज आपकी आवाज कुछ मुख्तलिफ लग रही है।
1: अच्छा अच्छा,
0: ये अच्छा अच्छा से पता चल रहा है बस।
1: चलो पता तो चला।
0: चले अच्छा, कोई गाना सुना दे अच्छा सा।
1: चोरी चोरी तेरे लाल अच्छा है, चोरी चोरी तेरे लाल अच्छा है, ये भी कोई जीना है, ये भी कोई जीना है, भी कोई मरना है, चोरी चोरी तेरे नाल लाल अखा है, चोरी चोरी तेरे नाल लाल अखा है।
0: ओके, किसका गाना है ये?
1: तो पाकिस्तानी है मैम, पता नहीं गाया किसने।
0: ये गाया हुआ है बहुत सारे लोगों ने, तो असल में ये गाया है रेशम ने। प्ले कर दें
1: जी,
0: प्ले कर दें यही वाला।
1: ओके डन कर दें।
0: चलें जी डन करते हैं। और कुछ कहेंगे?
1: और सेगमेंट क्या है?
0: क्या है? टंग ट्विस्टर।
1: टंग ट्विस्टर,
0: टंग ट्विस्टर, वो अभी आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद।
1: तो नहीं बैठे, नहीं चल रहा है, मैं खरपुर बैठाऊंगी, इधर एफएम नहीं चल रहा है।
0: तो वो मैं ऑनर बताऊंगी ना।
1: ये नहीं बताऊंगी,
0: अभी गाने के बाद बताऊंगी।
1: अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, फिर दोबारा मैं कॉल करेगा।
0: ओके जी, थैंक यू।

ओके आज का टंग ट्विस्टर बताने जा रही हूँ। आज का टंग ट्विस्टर ये है कि लेला ने लाल लाल लालटेने लंबी लकड़ी पर लटकाई। ठीक है, ये कहना है लेला ने लाल लाल लालटेने लंबी लकड़ी पर लटकाई। और इसको आप अब प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, क्योंकि जब हम वापस आएंगे अपने अगले सेगमेंट में ब्रेक के बाद, दैट इज बोलो तो माने, उसमें ये टंग ट्विस्टर आप कह के दिखा रहे होंगे कि लेला ने लाल लाल लालटेने लंबी लकड़ी पर लटकाई। ठीक है, तो ये करेंगे।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पाकिस्तान के लिए पानी रुगो कुदरती वसीलो न पर जिंदगी जो मसलो है। सिंधु दरिया के पानी से पाकिस्तानी कौम के मुकम्मल हक हासिल है। पाकिस्तान जो पानी रोकींदड़ के भरपूर जवाब दिनों वो। इस्लामाबाद में सिंधु तास माहदे बाबत सेमिनार के खिताब कदे सुतमा वाले वफाकी वजीर अता तारड़ चया है सिंधु तास माहदे से पाकिस्तान जो मौकफ वाजे है। सिंधु तास माहदे के खत्म या इन में तरमीम नथी कर सकजे। पानी के हथियार तौर इस्तेमाल कर आलमी कानून की भंजकड़ी है। कतर के शहर दोहा में अमेरिका ईरान के नुमाइंदे विच में अज मुलाकात थी या न। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पारा बिन्हीं मुल्क के नुमाइंदे विच में अज मुलाकात थे दावा ईरान जो इनकार। सदर ट्रंप चवा है ईरान से हलदड़ हफ्ते कतर में इजलास अहम साबित थी सके तो। ईरान एटमी हथियार न रखने से बेराजी है।

मुफ़ाहमत बेतरफ़ो मामिलो आहे। अमेरिका वाइदे ते अमल कंदो त असां बि पंहिंजी ज़िमेवारियूं पूरियूं कंदासीं। ईरानी सदर मसूद पिज़िश्कियान चयो आहे त धमकियुनि ते असांजो वाक़िफ़ वाज़े आहे। फ़ैसला करण वक़्त ॾाहप ऐं इंसानी वक़ार खे साम्हूं रखण सां गॾु अमली क़दम बि खया वञनि। कराची जे इलाइक़े क्लिफ्टन में दो तलवार वेझो हथियारबंदनि जी फायरिंग, चार ॼणा ज़ख़्मी। लाइसेंस ब्रांच वेझो फायरिंग में ज़ख़्मी थियलनि खे इस्पताल मुंतकिल कयो वियो। पुलिस मूजिबि ज़ख़्मियुनि में हाफिज़ अली, मुबशर ऐं मोहम्मद तलहा शामिल आहिनि। फायरिंग जे हवाले सां वधीक जांच जारी आहे। उमरकोट वेझो स्कूल जी भिति किरी पई, टे ॿारियूं दॿिजी फौत। ॻोठ गमोरी में भिति किरण सबबि सुगरा थी अबू बकर, किंज़ा थी अब्दुल समद ऐं रायबा थी फारूक दॿिजी वियूं। ॻोठाणनि ॿारनि खे भिते सां कढी सिविल इस्पताल उमरकोट पहुचायो। डॉक्टर्स पारां फोतकीअ जी तस्दीक। ॿारनि जा लाश ज़रूरी कार्रवाई बाद वारसनि हवाले। तगवाणी अवामी तहरीक पारां पाणीअ जी खोट ऐं सूबे जे मसलनि ख़िलाफ़ एहतजाज। सूबे में पाणीअ जी खोट ख़तम करण जो मुतालबो। अॻवाननि चयो त सिंध खे हिसे जो पाणी ॾिनो वञे। बलोचिस्तान जे इलाइक़े ओसा मोहम्मद में हथियारबंदनि जी फायरिंग, हिकु ॼणो क़तल, टे ज़ख़्मी। वाकियो 15 चौकीअ वटि पेश आयो। मोटरसाइकिल सवार हथियारबंद वाकिए बाद फरार थी विया। पुलिस मूजिबि मक़तूल जी सॼाणी अली विरोही जे नाले सां सुञाणप थी आहे। ज़ख़्मियुनि में वाटाड़ू समेत टे ॼणा शामिल आहिनि। ऐं कंबर मुक़ाबले में नौजवान मरणी वारसनि जो एहतजाज। मुक़ाबलो कूड़ो करार। पुलिस जो चवणु आहे त वगण बाईपास ते राजवाह वटां मुक़ाबले बाद फरमान खोसो खे ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार कयो आहे। ज़ख़्मी नौजवान जे वालिद बिजार खोसो जो चवणु आहे त पुलिस पुट खे 10 ॾींहं अॻु गिरफ़्तार कयो हो। मुक़ाबलो ॼाणाए संदसि जंग ज़ाया कई वई आहे। डीआईजी लाड़काणो जाली पुलिस मुक़ाबले जी आला सतही जांच करे इंसाफ़ ॾियारे।

0: जैपनीज टेस्टिंग मशीन नजरिए जे हमें मिले थी मोटरसाइकिल थी कार कारदगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320180003
1: खुशखबरी हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राबते जे लाइ 0385 769 0359
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
2: न अदा
4: यार, आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हाँ दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर, मुख्य मुझी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836
4: मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1550-724
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

सॉन्ग और सॉन्ग के साथ साथ वापस आ चुके हैं जी, एक अदर ब्रेक से और हमारा सेगमेंट दैट इज बोलो तो माने में आप लोग एक अदर टंग ट्विस्टर बोल के दिखाएंगे और वो जो टंग ट्विस्टर है वो कुछ इस तरह से होगा कि पहले हम ये प्ले कर लें उसके बाद बताती हूँ.

और टंग टोस्टर ये है कि लैला ने लाल लाल लालटेने लंबी लकड़ी पर लटकाई. लैला ने लाल लाल लालटेने लंबी लकड़ी पर लटकाई.

0: वेरी नाइस. कॉलर रिसीव करने जा रहे हैं. हेलो.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से? गाजी खान रिन भाई. टंग ट्विस्टर से ना बोलेंगे?
1: जी जी बोलेंगे.
0: बोलेंगे तो बोलें.
1: कर्ज में बताएं या ऐसे बताएं?
0: किस में बताएं?
1: कर्ज में, धुन में.
0: धुन में, धुन में बता सकते हैं आप?
1: हाँ जी बता सकते हैं.
0: तो बता दें.
1: लैला ने लाल तीन लंबी लकड़ी पर लटकाए.
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, गलत गलत कह रहे हैं आप. लैला ने लाल लाल लालटेने लंबी लकड़ी पर लटकाए.
1: लाल लाल लंबी लकड़ी पर लटकाए. लैला ने लाल लाल.
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, गलत कह रहे हैं आप, गलत कह रहे हैं. ऐसे नहीं है. लैला ने लाल लाल लालटेने लंबी लकड़ी पर लटकाई. यस.
1: लाल लाल लंबी लकड़ी पर लटकाए. लाल लाल लंबी लकड़ी पर लटकाए.
0: क्या बात है, क्या बात है. ओके, कुछ और कहना है?
1: आज मेरा गाना अपने नहीं किया तुमने.
0: कौन सा वाला?
1: ये दुश्मन कुछ कर रहे जी.
0: ये कल बताया था आपने मुझे?
1: आज ही बताया था, पहले नहीं.
0: अच्छा चले, मैं बिल्कुल सर्च करती हूँ. अच्छा, कौन सा गाना था आपका? चले ये मैं प्ले करती हूँ जी इंशाल्लाह आपके लिए. थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. 03000111348.

0: नेक्स्ट कॉलर. हेलो.
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: प्यारी यार जी, सईद अहमद बात कर रहा हूँ.
0: सईद अहमद, कैसे? ठीक ठाक
1: जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक. आप सुनाओ, ठीक हो? खैरियत है
0: जी? खैरियत है. मुझे बताइएगा, टंग ट्विस्टर सुना बोलेंगे?
1: हाँ प्यारी यार जी, सुना है, बिल्कुल सुना है, और बहुत अच्छा लगा है. बहुत दिनों के बाद आपसे मुखातिब हैं और आप आज प्रोग्राम सुन रहे हैं. इतने अरसे प्यारी यार जी, कहाँ गई थी आप?
0: मैं इतने अच्छे से, मैं जरा घूमने गई थी पहाड़ों में.
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, टूर लगाने की तैयारी आ रही
0: है? हाँ जी, बस अब हमने टूर लगाना शुरू कर दिए.
1: हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया. आप घूम फिर कर माशाल्लाह वापस आ गई ना अपने शहर में.
0: हाँ जी बिल्कुल, अपना शहर तो अपना ही होता है ना.
1: बेशक जी, बिल्कुल ये तो है,
0: बिल्कुल ऐसा. ये तो
1: अपना घर और अपना शहर तो सबसे प्यारा होता है ना. चाहे बंदा कहाँ भी चला जाए, जो अपने घर में और अपने शहर में सुकून मिलेगा कहीं भी नहीं मिलेगा,
0: कहीं भी नहीं मिलेगा. एग्जैक्टली, वेरी नाइस, वेरी वेल सेड. और कुछ कहेंगे? ओह सॉरी,
1: आप टंग ट्विस्टर सुनाना चाहूंगा?
0: टंग ट्विस्टर बोले.
1: लैला ने लाल ट्रेन पर लंबी लड़की लटकाई.
0: नहीं लैला, लड़की नहीं, लड़की कैसे लटकी? आपने पहले पहले ना मुझे एक एक बार गौर से सुने. लैला ने लाल लाल लालटेन ने लंबी लकड़ी में लटकाई. यस,
1: लाल लाल लैला ने लाल लाल टेन लंबी लड़की पे लटकाई.
0: लड़की पे नहीं, लकड़ी पे.
1: ओ लकड़ी पे, लकड़ी पे. लाल लैला ने लाल लाल टेन पर लंबी लकड़ी पर लटकाई.
0: नहीं,
1: लैला ने लाल लाल टेन लंबी लकड़ी पर लटकाई.
0: नहीं नहीं नहीं, गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं. कुछ और कहेंगे?
1: हाँ बस आज जी माशाल्लाह, आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और सुन रहे हैं हम भी बड़े शौक से.
0: थैंक यू, थैंक यू.

0: next caller. Hello.
1: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikum salam. Dua ka wal tang twister bol do.
1: इतनी जल्दी क्यों?
0: हाँ इतनी जल्दी
1: तो मुझे बात नहीं करनी है और
0: हाँ जी मैं टंग ट्विस्टर लेके खड़ी थी आपके लिए जैसे ही आएंगे मैंने बोला हाँ जी
1: वेला ने लाल लाल लाल तेने लंबी लकड़ी से लटकाई वेला ने लाल लाल लाल तेने लंबी लकड़ी से लटकाई लेला ने लाल लाल लाल तेने लंबी लकड़ी से लटकाई लेला ने लाल लाल तेने लंबी लकड़ी से लटकाई और भी
0: ओके वेरी नाइस बहुत अच्छा
1: अच्छा सुनो ओए
0: हाँ जी हाँ जी ओए
1: मेरा गाना कितना किया अकाउंट का
0: हाँ ओए कौन सा गाना बताओ ना सादगी तो हमारी जरा देखिए अगर इसकी जगह में अमानत अली का ही एक और अच्छा सा गाना सुना दूं तो क्या होगा
1: चलो कोई न्यू
0: न्यू हाँ? न्यू होगा गाना पुराना होगा लेकिन न्यू वर्जन में होगा क्या ख्याल है
1: चलो ठीक है देखो
0: पक्की बात है सुन लेंगी
1: हाँ?
0: हाँ? ओके जी अभी प्ले करते हैं और ये रहा गाना
2: One place. Let's say you need to write a blog post about minimalism. Instead of getting in your head about it, you can go right to the AI chat in a new Grammarly doc and type, give me a starting place.

0: की हो तो आवाज रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
1: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
4: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: कने गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9896-801
1: छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई नथो छा कजे
1: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
2: न अदा
3: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे
2: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी
1: हा अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतिलब हर क़िस्म जी एडवरटाइज़िंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मीरापुर
1: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 0301-399-2836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94
6: चांडिया कंबर वारा तू छाका तो पंजो शहर छदी।

ओके समीर अली कहते हैं सिस्टर मेरी तरफ से खालिद जुनेजर साहब और ताहिर लुन बलोच साहब को सलाम देना. ओके चला गया. साहब गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, अल्लाह ब्लेस यू विद द बेस्ट विशेस, टेक केयर टू यू एज वेल.

0: पाकिस्तान की शान वादी
1: और बेजान पर

जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है. आप मुझे कहते हैं आरजी रुखसार और लास्ट में कुछ कमेंट्स हैं आप लोगों के. अच्छा, आज का टंग ट्विस्टर कितने किसने अच्छा अच्छा और सही सही बोला है वो साथ साथ आपसे शेयर करूंगी, आपको बताऊंगी. तो आज के सेगमेंट के जो विनर है ना वो है जी गाजी खान रेंद और दुआ कवल. तो गाजी खान रेंद और दुआ कवल आप दोनों विनर्स हैं जी आज के बोलो तो माने सेगमेंट के. बहुत अच्छा टंग ट्विस्टर बोला. तो गाजी खान रेंद और दुआ कवल आज के सेगमेंट के विनर. साथ साथ कमेंट्स की तरफ मूव कर रहे हैं. स्मार्ट किशोर कहते हैं हाय हेलो सॉरी सिस, आज ये पोस्ट खुद मेरे सामने आई है. आपको पता है अगर पोस्ट मेरे सामने आ जाए तो मेरे हाथ मेरे बस में नहीं होते. ठीक है, तो कमेंट करना कोई बुरी बात तो नहीं है. अगर पोस्ट सामने ना भी आए आप सर्च करके भी तो कमेंट कर सकते हैं. क्या रोक रहा है आपको, क्या है ऐसा जो रोक रहा है कमेंट करने से, बताएं मुझे. पिटाई करेंगे हम उसकी पकड़ के.

क्या प्ले करना चाहिए लास्ट में हमें? मेरे ख्याल से मेरे पास एक गाना लाइन अप है, अगर तो मुझे कुछ समझ आता है. दिल की मुश्किल, मैं जरा गाने इस तरीके से चेक करती हूँ, बताऊँ आपको. ऐसे चेक करती हूँ. चलो ये सुनते हैं लास्ट में, ठीक है? शुरू से प्ले करते हैं. अच्छा गाना है. ओके, सो फाइनली इसी के साथ मेरे जाने का वक्त हो जाता है. इंशाल्लाह मेरी आपसे अब चिटचैट होगी शाम को 7 से लेके 8 बजे तक. सुनना मत भूलिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी है और पूरे करने के लिए जागना उससे ज्यादा जरूरी हुआ करता है. लिव सिंपल बट थिंक हाई. सो दिस इज मी आरजी रुखसार, साइंस आउट. टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफिज.

0: आप सुन रहे थे जी।
1: FM 88 की आवाज़, GA FM।

आहे, अमेरिका माहिदे ते अमल कंदो त असां बि ज़िमेवारियूं पूरियूं कंदासीं। धमकियुनि ते असांजो मौक़िफ़ वाज़े आहे।

सिंध हाई कोर्ट जी आईनी बेंच जो वो फैसलो अरबे रुपये के करप्शन वन रेफरेंसिस के बीहर एहतसाब अदालत दां मुंतकिल करण जो हुक्म नैब जो दरख्वास्तू मंजूर एहतसाब अदालत अगूणा फैसला कलदम करार एंटी करप्शन या बेन अदालत दां मोकिल रेफरेंस फौरी तौर एहतसाब अदालत दां मोकिलण जो हुक्म एहतसाब अदालतुन के रिकॉर्ड मिलंदे ही करप्शन रेफरेंसिस ते कानून मूजिब कार्रवाई करण की हिदायत इकबाल जैद अहमद अली रजा इफ्तिखार कायम खानी ए अहमद हयात समेत बेन खिलाफ अरबे रुपये जहा रेफरेंसिस बहाल एलपीजी कोटा नेशनल बैंक केपीटी ए कराची में सरकारी जमीन की गैरकानूनी मुंतकिली वाला केसिस भी हाने एहतसाब अदालतुन में हलंदा अगूणे आईजी सिंध गुलाम हैदर जमाली खिलाफ नैब की दरख्वास्त रद्द रेफरेंस लागेपल इदारे दां मोकिलण की हिदायत सिंध हाई कोर्ट फैसले में चयो है तो जेकर गैरकानूनी भर्तियों सबब मुलाजमन के बरतरफ किया वो है तो सरकारी नुकसान की रकम जिम्मेवार ऑफिसर के पगार या पेंशन में वसूल कई वे।

सिंध हाई कोर्ट में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान नतीजे के खिलाफ दाखिल दरख्वास्त बुधनी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पारा दरख्वास्त गुजारन जो रिकॉर्ड अदालत में पेश अदालत पारा दरख्वास्त गुजारन के कॉपीज की बीहर चेकिंग के लिए पंज रुकनी कमेटी जोड़ने की तजवीज अदालती तजवीज से एडवोकेट जनरल सिंध जो एतराज दरख्वास्तों से मेरिट तहत फैसलो कर सदा एडवोकेट जनरल चाहिए पैरी दरख्वास्तों को बुधन जो हो बाबत फैसलो किया वे अदालत चाहिए तो सच जो साथ दियो नौकरियों अचनी वन मामले के हमेशा लाए हल करने लाए गाइडलाइंस जारी कई वो जस्टिस निसार भमरो चाहिए तो पैसा वी कुछ मानन के पास किया वे तो जांच के लिए मामलो नैब दा मोकले छू था जस्टिस सलीम जैसर चाहिए तो अदालत में बीठल सब रोई रहा है नाइंसाफी थी है एक साहब आयो हो जैसे लिखण भी न अची रो हो मामलो कमेटी दा मोकलू था पास इम्तिहान वी पास सिंधी उर्दू में भी मजमून लिखी दई सकन था।

हैदराबाद जी सेशन कोर्ट हाईकोर्ट के हुकुम से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का गडल चटाभेटी इम्तिहान 2024 में फेल उम्मीदवार जो रिकॉर्ड पांजी तहवील में वठी छोड़ो। जरियन मुजिब सेशन कोर्ट जो अमलो रात देर से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की हेड ऑफिस पहुंची फेल उम्मीदवार के पेपर्स जो कॉपीज तहवील में वरत। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन सुप्रीम कोर्ट में वन हवालो डींदे रिकॉर्ड दियण का लवायण की कोशिश भी कई। अदालत खेन यो चई रिकॉर्ड तहवील में वरतो तो सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के हुक्म खिलाफ मनानामो जारी ना कयो जे बाद उम्मीदवार जो रिकॉर्ड दिनो वयो।

हैदराबाद में पुरानी दुश्मनी ते हथियारबंदन जो घर ते हमलो, एक जनो कत्ल। नसीम नगर थाने की हद अली पैलेस वाली घिटी में हथियारबंदन घर ते हमलो कयो, फायरिंग में ज़हूर अली सोलंकी मारजी वयो। पुलिस मुझे वाकियो पुरानी दुश्मनी ता पेश आयो आहे, वधीक जांच कई पई वञे। कराची के इलाके क्लिफ्टन में दो तलवार वेझो हथियारबंदन की फायरिंग, चार जना जख्मी। लाइसेंस ब्रांच वेझो फायरिंग में जख्मी थियल के अस्पताल मुंतकिल कयो वियो। उमरकोट वेझो स्कूल की भितकरी पई, टे बारियों दबजी फौत। गोठ कमोरी में भितकरण सबब सुगरा थी अबू बकर, किंजा थी अब्दुल समद, रायबा थी फारूक कोरी दबजी वो। गोठानन बारियों के भित हेठा कढ़ी सिविल अस्पताल उमरकोट पहुंचाया। डॉक्टर्स पारा फोतगी की तस्दीक, बारियों जा लाश जरूरी कार्रवाई बाद वारसन हवाले। बलोचिस्तान के इलाके उस्ताद मोहम्मद में हथियारबंदन की फायरिंग, एक जनो कत्ल, टे जख्मी। वाकियो 15 चौकी वट पेश आयो। मोटरसाइकिल सवार हथियारबंद वाके बाद फरार थी वया। पुलिस मुजिब मकतूल की सजर अली विरोही के नाले से सुणप थी है। जख्मी में वाटाड़ू समेत टे जना शामिल। जरई पानी की खोट ए चोरी खिलाफ टंडोबागो ए फैजगंज में आबादगार एहतजाज। टंडोबागो में नव माणिक वाह के आबादगार बदर चौक से धरणो हो। फैजगंज में अलीगंज शाख के

0: रेट दे दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स। एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ति जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।
1: खुशखबरी हानी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-3583-0300-3855-69।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

जहाँ से तार दो कम से खुशी तक, दिल से दिल तक, जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक, अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जनाब, आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर, मोरो, मीरपुर खास, नटियारी, सकरण, मेहरापुर, मदली, सकरण और जनाब लाड़गाना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो। जनाब प्रोग्राम है व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं और स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, हर तरह से खूबसूरती ही खूबसूरती आपको मिलने वाली, क्योंकि आप इस्तेमाल करने वाले हैं व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। क्या तरीके काम होने वाले हैं, किस तरह से आप जो है वो इस्तेमाल करके खूबसूरती को मेंटेन कर सकते हैं, खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं, सब कुछ बताएंगे। बहुत ज्यादा वाली बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ स्किन ब्यूटी बेहद वाला शुक्रिया। ओके जी, साथ ही साथ अपना भी तारफ करवाते हैं। सो लिसनर्स प्रेजेंट द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपके सिद्राव के साथ मौजूद है, मुखातिब हो चुकी है इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। जल्दी से अपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स, हालत उनके से ही आपकी हालत, उम्मीद शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुपरकूल मूड के साथ सुपरकूल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है और फाइनली यहां पर हमने एंट्रियां मारी ली। आपको पता है जब एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक। ओके जी, तो रेडी शेडी हो जाइए फन करने के लिए, बातें करने के लिए और एंजॉय करने के लिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, आने के फ्री होकर हमारा इंतजार कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी आंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान। सो भाई अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला। बिकॉज जालिरे आली सिद्राली बॉस आपके होंठों पर 440 उल्की संभाल आने के लिए। बिल्कुल जी, आपके होंठों पर 440 उल्की समाल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगा से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगा से प्रोग्राम करते हैं एक बहुत प्यारी सी नात के साथ, बहुत प्यारी सी नात सुनते हैं प्रोग्राम के आगाज में। उसके बाद जैसे ही वापस आते हैं बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। सो आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरत होते रहिए।

0: ओके जी, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी नात आपने यहाँ पर सुनी और प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एश एंड जी स्किन ब्यूटी शो, यानी कि ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। तो जनाब, आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले हैं, कौन सा प्रोडक्ट आपकी खूबसूरती को बढ़ाने वाला है, ये इस प्रोग्राम में आप लोगों को पता चलेगा। और साथ ही साथ थोड़ा बहुत सा आप ही इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया करें कि कौन सा प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल करना है और कौन सा प्रोडक्ट आपकी जल्द के मुताबिक तैयार किया गया है। तो अगर खूबसूरती की बात आती है तो वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इनका ख्याल आपके जहनों में आना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को बढ़ाने का दावा करते हैं बल्कि उसके अंदर इतने सारे केमिकल ऐड किए जाते हैं, जब आप उनका इस्तेमाल करने चाहते हैं तो आप लोगों को अंदाजा हो जाता है कि वाकई आप कितना गलत कर चुके हैं अपनी स्किन के ऊपर। तो बिल्कुल जी टेंशन नहीं लेनी, आपने इस्तेमाल करना है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का। क्या तरीकेकार होने वाले हैं, क्या खास बातें हैं जो कि आपको पूरे प्रोग्राम में बताती रहूंगी, लेकिन साथ साथ आप किस तरह से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले हैं, किस तरह हमारे प्रोग्राम की रौनकों को बढ़ाएंगे ये बताएंगे, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों से मैं टॉपिक यानी कि सवाल क्या पूछना चाहती हूँ। तो आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक होने वाला है वो कुछ इस तरह से होने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा आज मैंने टॉपिक आप लोगों के लिए लिया है। तो टॉपिक कुछ यूं है कि आप मुझे बताएं, हम ऐसा सोचते ना, यानी कि बहुत मरतबा ऐसा होता है कि हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम ये फला काम जो है वो कल करेंगे, यानी कि कल के ऊपर हमने बहुत सारी ऐसी चीजें डाल रखी होती हैं और कल मुझे नहीं लगता कि भाई देखा जाए तो वो कल कभी आएगा जब हम बहुत सारे काम उस कल के ऊपर करेंगे। तो आज आप मुझे जरा ये बताएंगे, फर्ज कर लें अगर कल होता ही नहीं, यानी कि कल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, तो आज आप क्या करने वाले थे? आपको कोई काम कहता है और आप बदले में ये कहते हैं कि मैं कल करूंगा, मैं कल करूंगी, तो अगर कल होता ही नहीं तो फिर आप क्या करते हैं? ओके जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है ये, मैं जानना चाहूंगी कि इसके ऊपर आपका क्या रद्दअमल होने वाला है, क्या जवाब देते हैं और क्या आपके मैसेजेस हैं जो कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ मौजूद रहना चाहते हैं, सामने प्रोग्राम होना चाहते हैं, तो अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जिए लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है, जिए लाड़काना FM 88.8 अगर आप सर्च करते तो आपको इजीली हमारा पेज मिल जाता है। पेज के ऊपर आइए, वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाती है, जिसे आपने लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर कर देना है। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए। आप जानते हैं ना, शेयरिंग इज कैरिंग होती है। ओके जी, जल्दी से अपने होने का एहसास दिलाते जाइए और आप हमारे साथ मौजूद ही पता होना चाहिए मुझे, और आप जिंदा हैं ये भी मुझे पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ आप मुझे ये बताएंगे कि अगर कल होता ही नहीं तो फिर आज आप क्या करने वाले हैं। जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, और साथ साथ अगर आप वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप डायल करेंगे 03-15-799-0595। ये नंबर आपकी आसानी के लिए है, ताकि आप परेशान ना हो, आप पैनिक ना हो, आप ये ना सोचें कि हमने कहां से जाकर प्रोडक्ट परचेज करने हैं, कैसे मिलेंगे, क्या करेंगे, ये होगा वो हो जाएगा। तो भाई जान रिलैक्स हो जाइए, लंबी सांस लें और डायल कीजिए 03-15-799-0595। इस नंबर के ऊपर रابطہ करेंगे तो आपको सारी मालूमात मिल जाएगी, कहां से जाकर परचेज करने वाले हैं और क्या प्राइसेस हैं, क्या ऐसी चीजें जो कि आप मुझसे नहीं पता चल रही तो आपको, तो वो आप सारी इस नंबर के ऊपर जो है ना वो मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल जी प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल गफार हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहते हैं प्यारे भाईजान को, माइनर मेलसी से आप हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। और वफा मुमताज अली खोसो हमारे साथ, गोट रईस गुल हसन खोसो खां, ओके जी तमाचो मोहब्बत एंड प्यारा भा प्रोग्राम बुधो पे तव्हांखे पसंद अची पियो। आदिल हुसैन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? मैं ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? कहते हैं वॾो मुश्किल आहे असां लाइ वापसी जो सफ़र, असां तव्हां सां गॾु हलण वक़्तु रस्तनि ते गौर ई कोन कयो हुयो, आए हाय छा ॻाल्हि कजे। यार परदेसी भाई हमारे साथ मौजूद है, गुड आफ्टरनून, वालेकुम अस्सलाम, मुल्तान से आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया। अली जफर हमारे साथ मौजूद है, आपको भी खुशामदीद किया जाता है। और अली रजा हमारे साथ मौजूद है, अली रजा कलहोड़ो, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। कहते हैं सिदरा गाना सुनाइएगा, मैं कोशिश करूंगी, गाने आपके लगाएंगे। और मलिक जफर हमारे साथ है, ओके जी। अच्छा, जितने भी लोग आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जा रहे हैं, पोस्ट को काइंडली आप लाइक और शेयर कर दिया करें, ठीक है, लाइक और शेयर कर दिया करें। आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, सहेलियां हैं, उन सबको आपने मेंशन कर देना है पोस्ट के ऊपर, ताकि सब लोगों को पता चल सके कि मार्केट में आ चुके हैं वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। अच्छा, साजिद हुसैन सुमरू हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम मिठू देरो से। ओके जी, मिठू देरो वालों को भी वेलकम कहा जाता है। हजार खान जतोई भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। फहीम शेख आ चुके हैं, मौला इस्लाम अदद, एंड मैं ठीक हूँ, आप बताएं फहीम आप कैसे हैं। और उसके अलावा हजार भाई कहते हैं हाउ आर यू आरजे सिद्रा मुस्कान, अदी कल नहीं आई आप, नहीं मैं कल आई थी, कल थोड़ा फेसबुक का इशू था तो लाइव नहीं आए थे हम, वरना कल मेरा प्रोग्राम हुआ था। मोहम्मद जमान हमारे साथ मौजूद है, वेलकम टू शो मोहम्मद जमान भाई जान। और फहीम शेख आपने गाना लिखा है, बिल्कुल जी लगाने की कोशिश करेंगे। और बजाद मलगानी, वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा खुशिया कहते हैं शादी के बाद किचन अपने हवाले कर दूंगा। ये एक ऐसी बात है जो मुझे लगता है कि सारी लड़कियां सुनना चाहती हैं। ओके, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हजार खान भाई कहते हैं आरजे एक ऐसी पर्सनैलिटी होती हैं जो अपनी आवाज़ से लोगों को एंटरटेन करते हैं, उनकी बातों से जोश भर देते हैं और उन्हें दुनिया से कनेक्ट करते हैं। बाकी बातें आपका अंदाज और उनकी एनर्जी सब कुछ मिलाकर उन्हें खास बनाता है। ओके जी, ये हो गई एक आरजे की तारीफ। उसके अलावा लाली लिसनर हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम, की आयो एफएमजी आनवान शान। उम्मीद है ठीक हूं ना, हमेशा वांगुर खिलंदा मुस्कुराईंदा आई महकंदा रहंदा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हुजे तव्हांखे दुआ कजो मुंहिंजे लाइ बि इलाही सारी। और बहुत शुक्रिया जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम में ज्वाइन होते जा रहे हैं, सबको वेलकम एंड खुश आमदी। प्रोग्राम आप सब लोगों का है। पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और बताइए आप कौन हमारे साथ मौजूद हैं, कहां से सुन रहे हैं और टॉपिक के ऊपर आपका क्या कहना है। अगर कल ना होता तो फिर आज आप क्या करने वाले हैं, जल्दी से बताइए और डायल करते जाइए 03-15-799-0595। लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, वापसी जल्दी आप लोगों के पास स्वतंत्र यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सुनिए, इंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ।
1: खुशखबरी खुशखबरी, हाणे अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0385-569-0300-003-8556-9।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: वठनी पवंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 03011 96 851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो त एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

खूबसूरत से लोग हैं, उनको वेलकम कहा जाता है। और साथ ही साथ अगर आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट, तो आप लोग मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे बताइए कि आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं, कौन सा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और हाँ कौन सा प्रोडक्ट आप लगाना चाहते हैं। और सबसे बेहतरीन बात ये आ जाती है कि आप लोगों के करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हैं या नहीं, क्योंकि ये चीज़ जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके एरिया में प्रोडक्ट मिल रहा है या फिर नहीं। अगर मिल रहा है तो बेहतरीन परचेज कीजिए, अगर नहीं मिल रहा तो डायल करते जा रहे हैं 03 1 5 7 9 9 5। ये नंबर है जो कि आप डायल करके अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा सकते हैं। तो जल्दी से अवेलेबल कराइए, उन्हें बताइए कि आप परचेज करना चाहते हैं, व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाना चाहते हैं, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाना चाहते हैं। ओके, इसी के साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि जब आप इस्तेमाल करना चाहें तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करेंगे और कौन सा प्रोडक्ट आप क्यों इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को हर तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी कि व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आपके लिए अवेलेबल है, व्हाइट एज ब्यूटी सोप आपके लिए अवेलेबल है, व्हाइट एज फेस वॉश आपको मिल रहा है, और उसके साथ आपको व्हाइट एज लवली क्रीम मिल रही है, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब मिल रहा है, और व्हाइट एज का लोशन आपको मिल रहा है, व्हाइट एज का हेयर रिमूवल लोशन आपको मिल रहा है, जो कि तीन मुख्तलिफ फ्लेवर्स के अंदर अवेलेबल है, जो कि आप इजीली जो है ना वो परचेज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप लोगों के हर एक बेसिक सी बेसिक नीड के लिए भी व्हाइट एज वालों ने प्रोडक्ट तैयार कर लिया है। तो आप इस्तेमाल करेंगे, अपनी खूबसूरती को बढ़ाते रहिए और हमेशा खूबसूरत रहिए, क्योंकि खूबसूरती मुझे लगता है कि आजकल आसान हो चुकी है भाई हासिल करना। तो आप भी इस्तेमाल कीजिए व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स और खूबसूरत रहिए, और खूबसूरतियाँ जो है ना वो बांटते भी रहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम अगर खूबसूरत हो जाते हैं ना तो हम दूसरे इंसान को नहीं बताते कि भैया हमें खूबसूरती जो मिली है वो क्यों मिली है। अगर आप भी ऐसे इंसान हैं तो आप कोशिश किया करें कि आप लोगों को बताएं, उन्हें ये समझाएं कि आप भी इस्तेमाल करें व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमें जो खूबसूरती मिली है वो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट से ही मिली है। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती को बढ़ाने के बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट, जैसे कि आप जानते हैं कि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में फुल नेचुरल अजाज इसके अंदर मौजूद है। अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कि नाइट क्रीम है, तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम के अंदर आपको एवोकाडो मिलेगा, मिल्क मिलेगा, एलोवेरा मिलेगा, ये वो प्रोडक्ट्स हैं और वो अज्जा हैं जो कि आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो खूबसूरती जो है ना वो हासिल करना जो है ना वो उतना ही आसान हो चुका है जितना आप शायद सोचते थे। तो खूबसूरती को हासिल कीजिए और इस्तेमाल कीजिए व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, जो कि आपकी जल्द को फ्रेश बनाएगी, गोरा बनाएगी और आप हमेशा ग्लो करते रहेंगे। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है जिसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा अगर आप कोई अच्छा सा साबुन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्हाइट एज ब्यूटी सोप आपके लिए अवेलेबल है। व्हाइट एज ब्यूटी सोप फुल नेचुरल अजा से तैयार किया गया है जिसे आप ऑल स्किन टाइप के लिए है, अवेलेबल है, इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप व्हाइट एज का साबुन नहीं लगाते या फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, व्हाइट एज का आपने फेस वॉश यूज करना है जो कि विटामिन सी से तैयार किया गया है, आपकी स्किन को ब्राइट बनाएगा, एंटी एजिंग के लिए है और साथ साथ क्रीमी फेस वॉश है। इतना जबरदस्त से कि आप लगाएंगे तो आप खुद ही कहेंगे आए हाय मजे ही आ गए। तो बिल्कुल जी इस्तेमाल कीजिएगा। और साथ साथ अगर आप व्हाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्हाइट एज लवली क्रीम जो कि आप लोगों के लिए फेयरनेस फार्मूला है, फेयरनेस क्रीम का मतलब ये होता है कि अक्सर वो लोग जो कि भाई मेकअप से थोड़ा सा दूर भाग रहे होते हैं, गर्मियों का सीजन आ जाता है तो मेकअप नहीं लगा पाते हैं लड़के लड़कियां, कोई ऐसा उनके पास क्रीम होना चाहिए जो कि आपकी खूबसूरती को बढ़ाता रहे, खूबसूरती को मेंटेन करे। और आपकी जो ये खूबसूरती, अगर आप बाहर जाते हैं कोई काम काज कर रहे हैं, धूप में जाना आपका बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, तो इसके लिए आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल हो जो कि आपकी खूबसूरती को भी बढ़ाए और आपकी खूबसूरती को जो है ना वो मेंटेन भी रखे। तो व्हाइट एज लवली क्रीम है जो कि रेडिएंट अल्ट्रा विटामिन से तैयार की गई है, 30 विटामिन के कैप्सूल्स के साथ साथ विटामिन B3 मौजूद है, विटामिन ई मौजूद है, विटामिन सी है, विटामिन डी है और साथ साथ सनस्क्रीन भी ऐड की गई है। क्या बात है, कुल मिलाकर आपके लिए परफेक्ट सा प्रोडक्ट तैयार किया गया है जिसका नाम है व्हाइट एज लवली क्रीम। व्हाइट एज लवली क्रीम आप हर उम्र का इंसान इस्तेमाल कर सकता है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, मर्द हैं, खवातीन हैं, हर कोई इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप किसी भी पार्टी में जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, किसी भी ओकेजन में आपको जाना है, कोई भी ऐसी मीटिंग है
तो आपने व्हाइटिश लवली क्रीम बस इस्तेमाल कर लेनी और आप यूं झट से रेडी हो जाएंगे। तो व्हाइटिश लवली क्रीम आप इस्तेमाल कीजिए, आपकी स्किन बढ़ती जाने की बढ़ती उम्र में आपकी स्किन जो है वो खराब होती जा रही है तो वो भी कंट्रोल में हो जाएंगी। आपके चेहरे पर रिंकल्स हैं या इस तरह की चीजें जो कि आप नहीं चाहते हैं आपकी स्किन के ऊपर हो, तो व्हाइटिश लवली क्रीम के इस्तेमाल से आपकी स्किन की सारी चीजें जो है ना वो कंट्रोल में रहेंगी। और अगर आप एक्ने की वजह से परेशान है तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब है ना मेरी जान, क्यों परेशान होते हैं? तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब जो कि ना सिर्फ आपके चेहरे के एक्ने को खत्म करेगा बल्कि आपके चेहरे पर एक्ने है, एक्ने के निशानात हैं या फिर कोई चोट का निशान है, कोई जलने का निशान है, इतने सारे निशानात हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स अगर आपकी स्किन के साथ है, आप इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो बस एक प्रोडक्ट आपको परचेज करना है जिसका नाम है डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब। डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब ना सिर्फ आपके चेहरे के प्रॉब्लम्स को खत्म करेगा बल्कि आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करेगा, क्योंकि डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब जो है फुल आयुर्वेदिक फार्मूले के साथ तैयार किया गया है। कोई टेंशन की बात नहीं कि इसके अंदर केमिकल डाले गए होंगे, नो नेवर, इसके अंदर जो है ना फुल जनाब आयुर्वेदिक फार्मूला है। आप ट्राई करके देखिए, आपको मजे आ जाएंगे। और इसी के साथ साथ आप इस्तेमाल करेंगे और डायल करेंगे 03-15-799-0595। ओके जी, नंबर के ऊपर रब्ता करते रहिए और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहिए। ये जो इतने सारे लोग आकर मुझे फेसबुक पर कमेंट करते हैं या फिर बोलते हैं ना कि बाजी ऐसा नंबर ते रबो क्यों था पर नंबर वारा जिकन कॉल न था करन, तो मां जडी उनन का पुछो तो छा मसलो है बाबा तां कॉल छो न था करो मानन जी, तो उनन खबर आ मुखे छा चयो, उनन चयो तो बाबा मानु जिकन न डारो बेजार कना तंग कना मिस कॉल ही नाइन वरी कॉल न कना मिस कॉल दई करी बंद करी छडी नाइन। तो अगर तमा या हरकत कयो था सिद्धी कॉल कंदा कयो न कॉल कयो जे अगलो मानु खणे तां सा गाला छा मसलो आ छा खपे, पर जडी तां उनन के मिस कॉल दीना पो तो बाबा जाहिर गाला न। सो तव्हां कॉल कयो, तव्हां मैसेज कयो, उन्हनि खे पंहिंजो मसलो ॿुधायो, तव्हां कहिड़ो प्रोडक्ट अवेलेबल कराइणु चाहियो था ऐं तव्हां किथे रहो पिया, त जीअं हू तव्हांजी ॻाल्हि सम्झनि ऐं तव्हांजे एरिया में अवेलेबल कराइनि व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। और मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं, ये जो लोग कहते हैं ना कि मैं कल करूंगा, मैंने ये काम कल करना है, कल के ऊपर सारे अपने काम थोप देते हैं, तो अगर आप फर्ज करें कल होता ही नहीं, कल होता ही नहीं, तो आप आज क्या करने वाले हैं?

0: ओके जी मासो भाई, हमारे साथ मौजूद है मासो भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। और चाचा खाले थोड़ी जो आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम बेटा से जो हवयो। मैं बिल्कुल मजे में, आप बताएं आप कैसे हैं? और कहते हैं कल क्यों नहीं आई, आई थी कल, मैं आई थी बाबा कल, मैं आई थी, फेसबुक पर थोड़ा मसला था, फेसबुक लाइव नहीं था, कल मेरा शो था। मौलाई मुजाहिद 2000 हमारे साथ मौजूद है टूफ चूसल से, वालेकुम अस्सलाम। माँ ठीक आए? हाँ माँ ठीक आया, तव बुधा कि आयो ठीक ठाक आयो, आई बुधायो केड़ो प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो पया, रोज प्रोग्राम में शामिल थियो पया, रोज प्रोग्राम बुधो पया, पर प्रोडक्ट घणो था कोने इहा त मुखे खबर ही कोने का, सो केड़ो प्रोडक्ट केड़ो मानु हणे पयो यो मुखे बुधाइंदा हलो। ओके चाचा खालिद कहते हैं कल था ही नहीं हमारे, हाँ क्योंकि आप नहीं आई थी और आज तो आप आई हो, तो एंजॉयिंग योर शो, योर टॉपिक आंसर। अच्छा वासु भाई कहते अदी सिडो अस पांजी सीट ते अची वया सी, डाडो बल्लो कयव। जीशान राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, इजहार लाशारी को सलाम, और आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? मौलाई मुजाहिद बोजार बिल्कुल आपको गाना सुनाते हैं। इकबाल लाशारी हमारे साथ मौजूद है, सोनो खान लाशारी मिर्पुर खास से, भाईजान हेलो। अच्छा ये इस गाने का नाम है इसीलिए आ रहा है, वरना इस गाने के अंदर जो कुछ बोल रहा है कख समझ नहीं आ रही। आ रही समझ कुछ नहीं, लेकिन वाइब बड़ी है भाई, वाइब मजे की है, तो गाना बहुत अच्छा है, एंजॉय कर रही है, और साथ साथ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ओके जी लाली कहती है कि अदी वो एक है भीतर रड़ कयो, गरीब जो गुजारो थी वेंदो, वडो मिस करे वपई, अदी वो चाला तांजो खुश आयो, काफी टाइम का पोई तां सने प्रोग्राम जो हिस्सो थी आयो, काडे गुम थी वे आयो बाबा, ये न कंदा कयो रोज ही ना कयो रोज रोज। और जीशान कहते हैं कि कल अगर ना होता तो आज मैं एक दिन का सीएम बनता। क्यों भाई सबको एक दिन का सीएम बनना होता है, ये बात मुझे समझ नहीं आई आज तक, ऐसा क्या ही कर लेंगे आप एक दिन के अंदर, बताइए जरा मुझे।
1: कहने दो जो कोई कहता है, हम करे वो जो दिल करता है।
0: हां जी
1: तो आओ ना मिल के यारो, आओ ना मिल के मारो।
0: ओगरी किशोर भाई आ चुके, हेलो हाय अदा सॉरी फॉर देर, इट्स ओके जा तुझे माफ किया। फहद अली हमारे साथ मौजूद है, हेलो कहते अदी हम आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। माशूक रिंद भी हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू। अच्छा चाचा खालिद कहते हैं सलाम टू मीर इरफान सियाल साहब, डी फॉरगेट माय रिक्वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट डी स्किन क्रीम सोप एंड फेस वॉश, डी स्किन का फेस वॉश और सिर्फ क्रीम आई है, तो आप उन्हें जिस नंबर के ऊपर मैंने बताया ना रابطہ कीजिए, आपको जरूर मिल जाएंगे।

अरे भाई, एक उम्र ही है जो बढ़ती हुई अच्छी नहीं लगती, बाकी तो इनकम हो या फिर ये सारी चीजें बढ़ती ही अच्छी लगती हैं। तो बढ़ती उम्र अगर आपकी है और आपको अच्छी नहीं लग रही, तो फिर आप वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी बढ़ती हुई उम्र को रोकिए जरा और आप हमेशा यंग रहिए और जवान जवान दिखिए और इस्तेमाल करते रहिए वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और साथ साथ गुलाम कादर भट्टी हमारे प्रोग्राम में है, कहते हैं खास लोगों को सलाम मटियारी से, आप हमारे साथ ही प्रोग्राम तमाम बेहतरीन है, सॉन्ग सुनेगा मेरे पास तुम हो।

0: और का दिल भी
1: पिघल जाएगा।
0: जो तुझको छुएगा वो जल जाएगा।
1: हाँ जी गाल तो वैसे थी। गाने इतने मजे के लगा दी गानों के अंदर ना गुमी हो जाती हूँ। आपके मैसेजेस हैं तो जरा उनको भी पढ़ लेते हैं। मोतिया सेठानी भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। नबी दोस्त बलोच हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं गुड शो, थैंक यू। चाचा खालिद कहते हैं जी खान रजिबो उनकी मिस कॉल कभी आना बाबा पांचों मसलो बधायो। और हे अनवर भाई कहते हैं चापे की जिससे नाराजगी है उसे माफ कर दें, जिससे मोहब्बत है उसे बता दें, ईगो गुस्सा और वो पहली बात करें करें वाली बातें तब तक ही चलती हैं जब तक हम हमें लगता है कि हमारे पास बहुत वक्त है। बिल्कुल जी, कितनी अच्छी आपने बात कर दी। देखिए अच्छा बख्तली सियाल भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो किशोर भाई कहते सॉरी कॉल अच्छी वही हुई टॉपिक के वराय बुधाए टॉपिक यू आ असा खोड़ गालू जिकन सुभाणे ते छडीना ना सुभाणे दो तसा ही कम करना सी सुभाणे ही थिंदो सुभाणे हु थिंदो त अगर फर्ज कयो सुभाणे थे ही ना त पोई तवा छा करना।

जी जी अदी वो कहती है कि मां ते रोज अचा पर या लाली कम थी करे रुगो असा सा भी सफा घट थी वे सबनी के या शिकायत आहे या तमाई कुटकी दियो असा का ते जोर आए बिल्कुल मुझे हथ लगी तमा जरूर नखे कुटकी दीदम या छोकरी सफा किनी दियो या सुधरी वनो पापा सुधरी वनो अकल से खो वडा थी आयो अब्दुल गफार हमारे साथ मौजूद हैं भाई जान वालेकुम अस्सलाम खुश आमदीद कहते हैं और फहद भाई आपको भी वेलकम करते हैं हेलो हेलो अनवर भाई कहते हैं कि असां के सिदरा बुधाईंदी आहे क्रीम जे बारे में यो ही काफी आहे हानी तवान जी स्किन जो ख्याल आहे नी मां चवां थी तां सब सोणा थी वणो नी समझो नी

ये गाना मेरी अम्मी का फेवरेट गाना है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा दर्दे दिल कहती है कि जिसके साथ नेकी करती हूँ वो मुझे दरिया में डाल देता है, आजकल यही चल रहा है, तो कोशिश करेंगे समझ गई होंगी। आधी पोस्ट को भी लाइक और शेयर कीजिए, पोस्ट को भी लाइक और शेयर करना होता है, एनी कंजूसी नकर ना करो। और सी डाल करती रहिए 03-15-799-0595 नंबर से कॉल कयो या मैसेज कयो, उन्हनि खे ॿुधायो तव्हां किथे रहंदा आहियो ऐं तव्हांजे एरिया में नथो मिले वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स, वाइटिश ब्यूटी क्रीम नथो मिले, वाइटिश ब्यूटी सोप नथो मिले, वाइटिश फेस वॉश नथो मिले, वाइटिश लवली क्रीम नथो मिले ऐं वाइटिश जो डॉक्टर पिंपल एंटी एग्नी ट्यूब नथो मिले, समुझो था। इहे सभु प्रोडक्ट तव्हां अवेलेबल करायो जीअं तव्हां बि सुहिणा थियो बाबा, तव्हां छो भला पोइ हिते रहिजो, सभु सुहिणा थी वञनि तव्हां न इहो नाइंसाफ़ी आहे तव्हांजा, मां न चाहींदमि तव्हां सां नाइंसाफ़ी थिए, तव्हां सभु सुहिणा थियो, ख़ूबसूरत ख़ूबसूरत रहो ऐं वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु कंदा रहो। टाइम थियो आहे हाणे वञूं था न्यूज़ ब्रेक जी तरफ़, हुन खां पोइ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हूंदा, वापसी जल्दी मोटी तव्हां ॾींदासीं, तव्हां काॾे न वञिजो, हिते वेठा हुजो, मां उहो हीअं वञी उहो हीअं मोटां थी, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाते रहिए खूबसूरत होते रहिए।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पाकिस्तान के लिए पानी रुगो कुदरती वसीलो न पर जिंदगी जो मसलो है। सिंधु दरिया के पानी से पाकिस्तानी कौम के मुकम्मल हक हासिल है। पाकिस्तान जो पानी रोकींदड़ के भरपूर जवाब दिनों मिलो। इस्लामाबाद में सिंधु तास माहिदे बाबत सेमिनार के खिताब कदे सुथमा वाले वफाकी वजीर अता तारर चवा है सिंधु तास माहिदे से पाकिस्तान जो मौकफ वाजे है। सिंधु तास माहिदे के खत्म या इन में तरमीम नथी कर सके। पानी के एहतियात तौर इस्तेमाल कर आलमी कानून की भंजकड़ी है। कतर के शहर दोहा में अमेरिका ए ईरान के नुमाइंदन विच में अज मुलाकात थी या न। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पारा बिन्हीं मुल्कन के नुमाइंदन विच में अज मुलाकात थियण की दावा ईरान जो इनकार। सदर ट्रंप चवा है तो ईरान से हलंदड़ हफ्ते कतर में थींदड़ इजलास अहम साबित थी सके तो। ईरान एटमी हथियार न रखण से राजी है। ईरानी सदर मसूद पेज़िश्कियान चवा है तो मुफाहमत बितरफो मामलो है। अमेरिका वायदे से अमल कंदो तो असा भी जिम्मेवार पूरी कंदासी। धमकिन से असो मौकफ वाजे है। सिंध हाईकोर्ट की आईनी बेंच जो वो फैसलो अरबे रुपये के करप्शन वाले रेफरेंसिस के बीहर एहतसाब अदालतों दा मुंतकिल करण जो हुक्म। नैब जो दरख्वास्तू मंजूर एहतसाब अदालतों जा अगूणा फैसला कलदम करार। एंटी करप्शन या बेन अदालतों दा मोकिल रेफरेंस फौरी तौर एहतसाब अदालतों दा मोकिलण जो हुक्म। एहतसाब अदालतों के रिकॉर्ड मिलंदे ही करप्शन रेफरेंसिस से कानून मूजिब कार्रवाई करण की हिदायत। इकबाल जैद अहमद अली रदा इफ्तिखार कायम खानी अहमद हयात समेत बेन खिलाफ अरबे रुपये जहा रेफरेंसिस बहाल। LPG कोटा नेशनल बैंक KPT कराची में सरकारी जमीन के गैरकानूनी मुंतकली वाला केसिस भी हाँ एहतसाब अदालतों में हलंदा। अगूणे IG सिंध गुलाम हैदर जमाली खिलाफ नैब की दरख्वास्त रद्द रेफरेंस लागेपल इदारे दा मोकलने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट फैसले में चाहिए तो गैरकानूनी भर्तियों सबब मुलाजमन के बरतरफ किया वो है तो सरकारी नुकसान की रकम जिम्मेवार ऑफिसर के पगार या पेंशन में वसूल कई वे।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमे मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियर दस्तयाब आई।
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437 0242460100।
5: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300 583 569 0300 583 8569।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: रात लाए हक

ओके जी, विलेज गुलाम कासिम सोलंगी फ्रॉम हिंगोरजा से दिलावर हुसैन सोलंगी हैं। बाजी सदर, आप कैसी हैं? आज एक छोटा सा सवाल आपसे, अगर आपको एक दिन के लिए वजीर आजम बनाया जाए तो आप क्या करेंगी? हमें मास्टर मंजूर का गाना सुनाएगा। थैंक यू डेडिकेट नजीर सोलंगी, अली जान सोलंगी, मुदस्सिर सोलंगी, आसिफ एंड फयाज अली सोलंगी के नाम। ओके जी, जो आपने मुझसे सवाल पूछा है ना, उसका सवाल का जवाब ये है कि मैं बनना ही नहीं चाहती। मैं बनूंगी नहीं, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है इन सब चीजों के अंदर। और ये हमारे साथ ही, अस्सलाम वालेकुम। अदी, टॉपिक कल नहीं होता तो आज मैं सारा दिन खाता और पीता, बस गाल खत्म। अच्छा मुनव्वर अली मुगल हमारे साथ ही मीरपुर खास से वीआईपी प्रोग्राम में निगत नाज का गाना सुनाइएगा। ओके जी, आपका गाना सुनेंगे हम और आपको खुशामदीद कहते हैं। इमरान भाई कहते हैं कि जने पंजाए पर जो किताब खोलियो सी, तहर सफेते लिखल हो केर भी केंजो ना ही आईली। लगेगा तांके बड़ा दुख मिलिया नला, उहे भी पांचन जी तरफा।

0: वारदात।
1: हाँ जी यहाँ तक गाला है। फहीम शेख कहते हैं सिद्रा ये टूटू क्या है बताओ मुझे पता नहीं है। ये यही बात है कि अगर इस तरह के लोगों को बिठाया जाता है ना बड़ी बड़ी सीट्स के ऊपर फिर ये ऐसा ही होता है हमें क्या मिला हमें क्या दिया तो बस आप छोड़ दें। ये एक ऐसी बात है जो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी समझ आई होगी। तो आप अकेले ही नहीं है ये पूरी जनता आपके साथ है। अच्छा शोनी भी हमारे साथ मौजूद है जी। शोनी कहती यहाँ पे देखे ना मैं मम्मा को बोल रही हूँ जब तारिक भाई की शादी होगी तो मैं सारी शॉपिंग इस्लामाबाद से करूँगी। आप ही मम्मा बोल रही हैं कि उससे पहले तुम्हारी शादी कर दूंगी तो अच्छी बात है ना अपनी शादी की शॉपिंग करना ये ज्यादा फायदे में रहेंगी आप। या मैं भी आपकी मम्मा के साथ हूँ ठीक है। अच्छा हमारे साथ है मौजूद आप कैसी हैं सिद्रा जी। कुछ दिन आमों के बाग में मशरूफ थे आम एक्सपर्ट। अच्छा अच्छा ठीक है चलिए जी अल्लाह पाक आपकी मदद करेंगे बहुत शुक्रिया। और आप हमारे साथ 78 मोरी से राजा हमीरचंद किशोर कुमार हीरा लाल पवन कुमार संजय कुमार सब भाइयों को वेलकम करते हैं। या हकीकत आ बाबा कुर्ब आजे को पंद कराइंदो आ जी ता सोनी प्रोग्राम में अचू था ये ना बिल्कुल बिल्कुल प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है। वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते रहिए खूबसूरतियां हासिल करते रहिए। अच्छा मौजूद है हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम हैप्पी ट्यूसडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आर्टिस्ट सिस्टर सिद्रा मुस्कान आप कैसी हैं। डियर वाइट एश सिद्रा मुस्कान क्रीम का नाम होना चाहिए था फिर तो मैं गर्मी में भी यूज करती चलें फिर आप अभी इस्तेमाल करके देख सकती क्योंकि ये भाई इतने मजे के प्रोडक्ट्स हैं जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम है आप लाजमी लगाइएगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी है जो आप इस्तेमाल कर सकती हैं।

ఎందుకరే నయా అయింది. హా బాబా, मौजूद ही अस्सलाम वालेकुम सुरु जाने, क्या हाल है. मैं भी आपके साथ साथ हूँ अपनी कजिन्स के साथ. आज मेरी कजिन समी की एक फरमाइश है, शाहिद बबर का गाना सुनेगा. कोई सा भी सुना दूं, चले मैं लगाती हूँ आपके लिए गाना. बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम करती है हमारी प्यारी लू भी हमारे साथ मौजूद है. और शोनी कहती है आप ही जान वो मेरी. हाँ तो ऐसा ही होना चाहिए. बहुत शुक्रिया. अच्छा, पोस्ट को लाइक और शेयर करेंगे आप फेसबुक वालों. अच्छा, सुमार किशोर भाई कहते हैं सुबह नथिए को सिद्रा या किशोर नाय जो सुबाने नहीं दो. अच्छा, दर्दी दिल के दी रुको रुको मैं भी आ गई हूँ. अच्छो जो भी हो वे हो बिस्मिल्ला. अनवर भाई हमारे साथ ही, बहुत शुक्रिया. मोहम्मद जमान कहते हैं कल को स्कैप करते हुए आज और अभी से डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कर देते हैं. योर टॉपिक आंसर बुआ जी, क्या बात है, क्या बात है, परचेज कीजिएगा. ठीक है. और फहद अली हमारे साथ है, थैंक यू फहद अली. अच्छा वो था किशोर भाई सुबू दींदी ना, माँ सुबाणी जी गाल कया थी. अच्छा आदिल कहते हैं जवाब जे करे सुबाणे न हुजे त अज असी ही सब कंदासी. पहिरियों अलार्म के ट्रोड़े किचरे में उछलाए छॾींदासीं. सुबुह जो जल्दी उथण जो कम सुबाणे जो हो. ॿियो भाउ जो चार्जर वठी ड्रामा ॾिसंदासीं, हू कावड़ कंदो पर असीं चवंदासीं त वापसि सुबाणे कंदासीं. मिठाई वारे खां ॿ किलो जलेबी उधार वठी अकेलो ई ख़तम करे छॾींदसि. अॼु जो मज़ो सुभाणे जो मसलो सुभाणे ॾिसंदासीं. ओ इहा ॻाल्हि, सुभाणे वारा माण्हू जेके न ॾाढा मतिलबु अॼुकल्ह असांखे बेज़ार कनि था, त सुभाणे ते कमु न छॾींदा कयो. इन लाइ मूं अव्हां खां सुवाल पुछो त अगरि सुभाणे अचे ई न हा त पोइ तव्हां छा कयो, हा पोइ कहिड़ो बहानो हुयो तव्हां वटि. ज़ीशान कहते इस क्रीम का मैंने स्क्रीन शॉट लेकर आगे सेंड कर दिया है, वो परचेज कर लेगी, अब मेरी कमीशन तो बनती है. इते भी कमीशन खपे. चलो तव्हांजी कमीशन जे बदिले तव्हांखे गानो था ॿुधायो. ॿुधायो कहिड़ो गानो ॿुधंदो.

से प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरत होते रहिए, खूबसूरतियां बढ़ाते रहिए जनाब, और डायल करते रहिए 03-15-799-0595। जल्दी से नंबर डायल कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और परचेज करते जाइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम। डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाएं। और यहाँ पर टाइम हो जाता है जरा, हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास। तो मौजूद रहिए, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। लगाइए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए।

0: ये FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ति जिलाई आसिम हुसैन आराई, 0307-3592120।
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं, बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सूमर

पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 0301 196 851

0: ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3385-69।
1: उम्मीद के दिए जलते हैं।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर, तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स। अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 0300-00-27234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 0301-3865-453।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा।
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
3: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
8: तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट अच्छी लगती है।
9: मेरे बाबा ने मेरी बात पक्की कर दी है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम कभी नहीं मिलेंगे, मुझे माफ कर देना।

वापस आ चुके हैं हिंदू पारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88.8 पर मौजूद हमारे साथ सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लोग, इतने सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्या बात है भाईजान। और हमारी आवाज जहां जहां तक जा रही है सबको वेलकम एंड खुश आमदीद। और बताइए आप कहां कहां से हमारे साथ मौजूद हैं, कौन कौन मौजूद है और आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाना चाहते हैं और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एक ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अक्सर औकात ऐसा हो जाए ना कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगते हैं और आप लोगों की स्किन सेंसिटिव वो आड़े आ जाते हैं और आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से थोड़ा सा दूर चले जाना होता है कि भाई हम कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो स्किन मजीद खराब हो जाती है क्योंकि हमारी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव स्किन वाले लोग अब तैयार हो जाए क्योंकि आपके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम मार्केट में आ चुकी है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाते साथ ही आपकी स्किन जो है ना वो खूबसूरत होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, हर तरह की स्किन के मुताबिक इसे डिजाइन किया गया है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर जो है ना वो विटामिन ई बीड्स मौजूद हैं, माइक्रो बीड्स फॉर्मुलेशन के साथ इस प्रोडक्ट को तैयार किया गया है बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही खुलूस के साथ और बहुत ही नई नई इस तरह की विशेष के साथ कि हमारे जितने भी लोग हैं वो इस्तेमाल करेंगे तो उनकी खूबसूरती उनको मिलेगी और खूबसूरती बरकरार रहने वाला एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल में आप लोगों को बहुत अच्छे वाले रिजल्ट्स देता है। तो जल्दी जल्दी से आपने भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना, एक नाइट क्रीम है इसे रात के टाइम इस्तेमाल कीजिएगा और साथ में आपने इस्तेमाल करना है डी स्किन फेस वॉश। और डी स्किन फेस वॉश लगाएंगे इतना रिची रिची सा आपको महसूस होगा ना, यानी कि इतना जबरदस्त प्रोडक्ट आए जिन्हें तुम्हें इस्तेमाल करना ताकि अंदाजो थी वे दोनों शेयर जो छो तो इन अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम मौजूद है जो तुम्हारी स्किन के हाइड्रेट रखो है, क्लीन कंदो है, आई मॉइस्चराइज कंदो है। सो अड़ो जबरदस्त प्रोडक्ट अगर तुम्हारे एरिया में अवेलेबल ना है तो उनके अवेलेबल करायो, आई डायल 0315799 0595। ओके जी, सॉन्ग की आवाज में जिनकी फरमाइश असांकी लुबी कही हुई ओके जी, आने वाले सब लोगों को वेलकम कहा जाता है प्रोग्राम में। हमारे पास टाइम जो है बाकी थोड़ा सा बचा है तो क्या कह रहे हैं।

बहुत ही खूबसूरत गाना। और साइमा मीर हमारे साथ हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम मार्शल मक्खन जैसी आज सिद्रो की आले निगत आई भी और गई भी, मैनू पता ही नहीं चला टॉपिक कल ना होता तो के बाद क्या। और हाँ जी निगत नाज आ भी गई और चली भी गई बेचारी। और शोनी कहती हैं आप जान कभी आतिफ का गाना भी लगाया करें। बिल्कुल बिल्कुल शोनी के लिए लगाएंगे जी। और थैंक यू सो मच आप हमारे साथ मौजूद हैं। उसके अलावा हमारे साथ हैं जी आकाश अली, कहते हैं हाय आप कैसी हैं। आई एम आकाश अली पीर जादो माई ब्रदर दिली जान पीर जादो मोरो से आप हमारा शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच। और मोलाई मुजाहिद बोजार कहते हैं ठूप चूसल से टॉपिक अगर कल ना होता तो हम बोलते शाम को आ जाना, अगर शाम ना होती तो हम बोलते मामा दोपहर को आना, अगर दोपहर ना होती तो हम बोलते आधे घंटे के बाद आ जाना। हाँ असम या एकड़ी क्वालिटी आए तो असम बहाना डाटा बढ़ाईंदा आयो। सो यह हकीकत सफ़ा जबरदस्त तरीके से तुम्हारा टॉपिक एक्सप्लेन करो है, सो वेरी नाइस। किशोर भाई कहते हैं कि वफा मिले ना मिले ए खुदा दगा ना मिले, कोई मिले या ना मिले मगर किसी से मिला हुआ ना मिले। आए

अच्छा फहीम कहते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम बहुत अच्छी है, वेरी नाइस जी, इस्तेमाल करती रहिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे. और चाचा खालिद कहते हैं मैंने रात आपका यूट्यूब चैनल देखा. हाँ बस मैं ना चीजों को ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकती, पता नहीं क्यों. आजकल तो कुछ ज्यादा ही मैं वो हो चुकी हूँ कि भाई बस क्या ही दिखाना, तो ये थोड़ा बहुत है मेरी तरफ से. इससे तो और ज्यादा है मेरे दिल के अंदर, और ज्यादा वाली शिद्दत. सनाउला बिरोई हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम. मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे. अब्दुल गफार हमारे साथ हैं, डॉक्टर अब्दुल गफार शाहपुर से हमारे साथ हैं, सांगढ़ तालुका शहदादपुर. ओके जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं. और उसके अलावा हैं जी हमारे साथ, एक मिनट, फहीम कहते हैं कि

ओके जी, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा गाना आप यहाँ पर सुन रहे हैं और प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो. व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो आप लोगों का अपना प्रोग्राम है जिसमें आप हमारे साथ मौजूद रहते हैं. आप लोगों को व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो उनके बारे में बताते हैं और आप इस्तेमाल भी करते हैं और आपको वो वाली खूबसूरती मिलती है जो कि आप हमेशा से हासिल करना चाहते हैं. तो इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए और डायल करते रहिए 03151579905.

किशोर भाई कहते हैं टॉपिक मजाक से हटकर मैं कभी आज के काम कल पर नहीं छोड़ता क्योंकि कल किसने देखा है ओ या गाल। और हमारे साथ हैं जी दर्दे दिल कहती हैं कि एडो सोनो एडो सोनो आही तारीफ शाह चंदा जानी कया ये सॉन्ग प्ले करना डेडिकेट हम सब की तरफ से आपको। मेरे साथ अलीजा अस्मा और आयशा जाहिदा शो सुन रही है और एंजॉय कर रहे हैं। चलें स्वीटी आपका गाना हम कल सुनेंगे क्योंकि आप जानती हैं कि आज जो है ना वो लिस्ट फुल हो चुकी है आपने थोड़ी देर फरमाइश कर दी। ये होता है जब आप देर से गाना फरमाइश करते तो आपका थोड़ा सा गाना स्किप हो जाता है, तो पहले पहले फरमाइश किया करें। अच्छा दीदार अली बिरोही हमारे साथ मौजूद है कराची से, आप हमारे शो सुन रहे हैं, थैंक यू। दर्दे दिल कहती है कि एक दिन में सारे काम पॉसिबल नहीं, कल नहीं होता तो फिर परसों कर लेते क्या बात है भाई, क्या बात है, आप लोगों का जवाब ही नहीं। अच्छा फहीम शेख कहते हैं कि मेरे बहुत करीब डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिलती है क्योंकि मेरे रहता ही रेशम गली में हूँ। क्या बात है, मैं ये आपसे पूछने वाली थी कि आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करी या नहीं, लेकिन आपने खुद ही बता दिया क्योंकि जो लोग रेशम गली में रह रहे हैं, रेशम गली के आस पास है, वहाँ अगर आप जाते हैं रेशम गली के अंदर तो आप लोगों को हर एक जगह पर जो है ना वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है, डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है, अवेलेबल हो चुका है और साथ साथ व्हाइट एज के सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो फहीम आप व्हाइट एज लवली क्रीम भी परचेज करके देखिएगा, वो तो डेली बेसिस के ऊपर इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मुझे लगता है कि हर इंसान के पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप परचेज कीजिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा, आपको बहुत वाले अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। तो बिल्कुल जी ये खास बातें हैं जो कि व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की हैं जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा। मैंने कल कॉल्स ली थी, कल वो चिचमिच वाली कॉल्स थी, ये मुझे अंदाजा हो गया कि एक दिन सही कॉल्स लग रही, दूसरे दिन चिचमिच वाली तो कल चिचमिच वाली थी तो हम जो है ना वो कर लेंगे, ठीक है। अच्छा हजार खान कहते हैं कि अगर कल ना होती तो कल का शो भी आप आज कर लेती हाँ कह सकते हैं। अच्छा दर्दे दिल कहती हैं कि सादा रहें, खास रहें और मुखलिस रहें, दुनिया काफी है अपने रंग दिखाने के लिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। सनाला बिरोही आपका बहुत शुक्रिया, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है। और हैं जी हमारे साथ हजार भाई कहते हैं कि हम भी आपके साथ साथ हैं, शो एंजॉय कर रहे हैं, अदी लाजवाब जबरदस्त प्रोग्राम तमाजो हले पायो सो मोहब्बत हूँ प्यारे भाजू। और स्मार्ट गोपांग हमारे साथ मौजूद है, मैं भी आ गया, वालेकुम असलम, शो इज नाइस, थैंक यू।

0: ಕೋ ದೋಸ್ತು ನಾಹೆ
1: ಈ ಹಕೀಕತ
0: ಮುರ್ಕಿ ಗಲ್ಹಣವಾರೋ ಕೋ ದೋಸ್ತು ನಾಹೆ ಹೂಂದೋ
1: और मैं इतनी अच्छी हूँ मुझे लगता था कि जो भी वाकई जिसने हमसे दोस्ती करी है वो वाकई बहुत अच्छा है लेकिन यो न हूं दो यो गानो काश मैं पेड़ा बुद्धि बैठा ममताज नो लाई जो आई मुखे भी खबर पवे हां तो वाकई बाबा हर हाथ मिलाने वारो दोस्त ना ही होंदो या गाल ता भी याद रखो अच्छा किशोर भाई कहते हैं शोहर और बीवी का रिश्ता तब तक गहरा होता है जब तक शोहर बहरा होता है यह हकीकत है और बीवी शायद गूंगी अली अकबर ब्रोही भाई हमारे सारे सक्रियण से आप हमारा शो सुन रहे हैं आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है बहुत शुक्रिया उसके लिए और हैं जी लाली कहती है जाने फिर दोस्त जो यूट्यूब चैनल मोनेटाइज थी वे आ चवे थी सिद्रा के बुधायो वाह वाह वाह वाह बारन जा भी चैनल मोनेटाइज थी वे

0: जी ॾाढो भलो गानो ॿुधो पिया तव्हां अच्छा बिलाल अली भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं वालेकुम अस्सलाम मां भी बुधेंगे हाणे खां बुधेंगे पहिरियां खां बुधेंगे न ॾाढो मज़ो हुयो आज मुझे लग रहा है प्रोग्राम अच्छा था और मुझे लग रहा है कि अच्छी अच्छी मूड में थी मैं आज और कहते हैं फहीम कि आज खरीदूं गाड़ी स्किन ब्यूटी क्रीम पर बताओ कैसी है बहुत अच्छी है मैं तो पूरे प्रोग्राम में बताती आ रही हूँ और कितना बताऊं आप परचेज कीजिए इस्तेमाल कीजिएगा फिर आप बताइएगा कि आपको कैसी लगे और कहते हैं बिल्कुल आप नहीं नहीं मैंने ले ली है मुझे मतलब पता है कि कितने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं बस आप लीजिए आप परचेज कीजिए बिलाल कहते हैं कि इन करे कैसा हथी नायू मिलाईंदा भलो कंदा आयो अला सफा भलो कंदा इंटेलिजेंट आयो तव्हां
1: हर हथ मिलाइण वारो को दोस्त ना है
0: और कहते हैं वांदा नहीं हुजेंगे चले अच्छी बात है आप वांदा हो गए हैं तो आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं जब जब वांदा हो जाइएगा हमारा प्रोग्राम सुनिएगा असान तो मौजूद ही मौजूद आयो 1 बजे खां 3 बजे ताईं ओके अॼु वहां खां जेको सवाल पुछो इहो हुयो त अगरि जेके माण्हू सुभाणे ते पंहिंजो कमु छॾे ॾींदा आहिनि त असां सुभाणे कंदासीं अगरि सुभाणे ई न थिए त पोइ तव्हां छा कंदा इहो ॾाढो हिकिड़ो संजीदा सवाल हुयो जवाब तव्हां ॾिनो इलाही सुठो लॻो जेके जेके माण्हू असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया

हाँ जी, हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। मुझे खबर ना अलाई शी मैडो के लिए नहीं आया। हो बुद्धो थो ना जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। लाइफ कैसे भी चल रही लेकिन हमने तो मुस्कुराना है। गाल तो वैसे थी।

अच्छा निदा, ये आपने बहुत अच्छा काम कर लिया है, बहुत अच्छा काम किया. अब लोग सोचेंगे निदा ने क्या किया है, वो नहीं बताएंगे. अच्छा फजीला कहती है प्यारी टिकटॉक यूज करती है? नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ यूट्यूब यूज करती हूँ.

अच्छा बिलाल समझते हैं पहले से ही इन गाल जो कहीं टेंशन ही ना आए कयो बाबा मानू छा चवंदा मानू छा सोचिंदा अगते थी हवा चंडे अच्छा थकायल गाना वाकई लास्ट लिंक में असान लाइ हणंदा आहियूं जीअं जेके माण्हू ॿुधी ॿुधी प्रोग्राम हाणे सोचनि त हाणे बाबा वञण जो टाइम थियो आहे त उन्हनि खे थकायल गाना ॿुधाए छॾींदा आहियूं उन जे मुंहं में थकायल गाना हणी छॾींदा आहियूं बाक़ी स्टार्टिंग में असां वीआईपी वीआईपी गाना ॿुधंदा आहियूं वरी इनशाला तव्हां सां मुलाक़ात असांजी सुभाणे थियण वारी छो त हाणे असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु जेको उहो ख़तमु थी वियो आहे सफ़ा ख़तमु थी वियो आहे अच्छा यूट्यूब यूज कैसे होता है ना असां यूट्यूब हलाईंदा आहियूं रेस ॾींदी आहियां सफ़ा स्पीड में अरे मां सोचींदी आहियां अगरि यूट्यूब न हुजे हा त मुंहिंजी ज़िंदगी केॾी बोरिंग हुजे हा शुक्र ओके सो बिल्कुल जी प्रोग्राम आप सुन रहे थे वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो कि भाई डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें हमें बताइएगा और वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर आप इस्तेमाल करें तो वो भी आप हमें बताइएगा इनशाला तुम सा वही सुबह मिलंदी तो पाँच ओ हेडो सारो ख्याल रखना कहीं का गलती थी हुए कोई लफ्स गाल सुनो न लगो हो तो उन माजरत क्यों मोकलानी ना बाबू सिंह सलामत सा सलामत अल्लाह हाफिज बाय बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर सुमी पोहाणी.

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: इस्लामाबाद में सिंधुदास माहिदे बाबत सेमिनार के खिताब कंदे सुत्समा वारे वफाकी वजीर अता तारर चयो आहे त सिंधुदास माहिदे ते पाकिस्तान जो मौकिफ वाज़े आहे। सिंधुदास माहिदे खे खत्म या इन में तरमीम नथी करे सघिजे। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक चयो त पाकिस्तान पंहिंजे हिसे जे पाणी ते को बि ठाह न कंदो। सिंधुदास माहिदो दुनिया जे मज़बूत माहिदनि मां हिकु आहे। कंहिंखे बि इलाइक़ाई ऐं आलमी अमन यगमाल बणाइण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। कतर जे शहर दोहा में अमेरिका ऐं ईरान जे नुमाइंदनि विच में अॼु मुलाकात थींदी या न। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पारां ॿिन्ही मुल्कनि जे नुमाइंदनि विच में अॼु मुलाकात थियण जी दावा, ईरान जो इनकार। सदर ट्रंप चयो आहे त ईरान सां हलंदड़ हफ़्ते कतर में थींदड़ इजलास अहम साबित थी सघे थो। ईरान एटमी हथियार न रखण ते राज़ी आहे। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त मुफ़ाहमत बितरफ़ो मामिलो आहे। अमेरिका माहिदे ते अमल कंदो त असां बि ज़िमेवारियूं पूरियूं कंदासीं। धमकियुनि ते असांजो मौक़िफ़ वाज़े आहे। उमान आबन हरमुस ते बहरी जहाज़नि खां ट्रांज़िट फीस वठण जी मुखालफ़त करे छॾी। उमानी परदेह वज़ीर बदर बिन हमद चयो आहे त आलमी बहरी रस्ते तां फीस उगाड़ण जा हामी न आहियूं। माहौलियाती तहफ़ुज़ ऐं नेविगेशन बाबति सर्विस चार्जिस ते रज़ाकाराणे नमूने ॻाल्हियूं करे सघजनि थियूं। सिंधा कोर्ट जी आईनी बेंच जो वॾो फ़ैसिलो, अरबे रुपियनि जे करप्शन वारनि रेफरेंसिस खे ॿीहर एहतसाब अदालतुनि ॾांहुं मुंतक़िल करण जो हुकुम। नैब जूं दरख़्वास्तूं मंज़ूर, एहतसाब अदालतुनि जा अॻूणा फ़ैसिला कल्ह दम करार। एंटी करप्शन या ॿियनि अदालतुनि ॾांहुं मोकिलियल रेफरेंसिस फौरी तौर एहतसाब अदालतुनि ॾांहुं मोकिलण जो हुकुम। एहतसाब अदालतुनि खे रिकॉर्ड मिलंदे ई करप्शन रेफरेंसिस ते कानून मूजिब कार्रवाई करण जी हिदायत। इक़बाल ज़ैद अहमद, अली रज़ा, इफ्तिखार क़ाइम ख़ानी ऐं अहमद हयात समेत ॿियनि ख़िलाफ़ अरबे रुपियनि जा रेफरेंसिस बहाल। LPG कोटा, नेशनल बैंक, KPT ऐं कराची में सरकारी ज़मीननि जे गैरक़ानूनी मुंतक़िली वारा केसिस बि हाणे एहतसाब अदालतुनि में हलंदा। अॻूणे IG सिंधु ग़ुलाम हैदर जमाली ख़िलाफ़ नैब जी दरख़्वास्त रद्द, रेफरेंस लाॻापियल इदारे ॾांहुं मोकिलण जी हिदायत। सिंधा कोर्ट फ़ैसिले में चयो आहे त जेकॾहिं गैरक़ानूनी भर्तियुनि सबबि मुलाज़मनि खे बरतरफ़ कयो वियो आहे त सरकारी नुक़सान जी रक़म ज़िमेवार आफ़िसर जे पघार या पेंशन मां वसूल कई वञे। सिंध हाई कोर्ट में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहान नतीजनि ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ते ॿुधणी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पारां दरख़्वास्त गुज़ारनि जो रिकॉर्ड अदालत में पेश। अदालत पारां दरख़्वास्त गुज़ारनि जे कॉपीज़ जी ॿीहर चेकिंग जे लाइ 5 रुकनी कमेटी जोड़ण जी तजवीज़। अदालती तजवीज़ ते एडवोकेट जनरल सिंध जो एतराज़, दरख़्वास्तुनि ते मेरिट तहत फ़ैसिलो करण जी सदा। एडवोकेट जनरल चयो त पहिरीं दरख़्वास्तुनि जो ॿुधण जो हुअण बाबति फ़ैसिलो कयो वञे। अदालत चयो त सच जो साथ ॾियो, नौकरियूं अचणियूं वञणियूं आहिनि। मामले खे हमेशह लाइ हल करण जे लाइ गाइडलाइंस जारी कयूं वेंदियूं। जस्टिस निसार भमरो चयो त पैसा वठी कुझु माण्हुनि खे पास कयो वञे थो। जांच जे लाइ मामिलो नैब ॾांहुं मोकिले छॾियूं था। जस्टिस सलीम जेसर चयो त अदालत में बीठल सभु रोई रहिया आहिनि त नाइंसाफ़ी थी आहे। हिकु साहिबु आयो हो जंहिंखे लिखण बि न अची रहियो। मामिलो कमेटी ॾांहुं मोकिलियूं था, पास थींदड़ खां इम्तिहान वठंदी। पास थींदड़ सिंधी या उर्दू में बि मज़मून लिखी ॾेई सघनि था। हैदराबाद जी सेशन कोर्ट हाईकोर्ट जे हुकुम ते सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खां गॾियल चटाभेटी इम्तिहान 2024 में फेल थींदड़ उमीदवारनि जो रिकॉर्ड पंहिंजी तहवील में वठी छॾियो। ज़रियनि मूजिबि सेशन कोर्ट जो अमलो राति देरि सां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जी हेड ऑफिस पहुची फेल उमीदवारनि जे पेपर्स जूं कॉपीस तहवील में वरितियूं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन सुप्रीम कोर्ट में वञण जो हवालो ॾींदे रिकॉर्ड ॾियण खां लवाइण जी कोशिश बि कई। अदालत खे इहो चई रिकॉर्ड तहवील में वरितो त सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट जे हुकुमनि ख़िलाफ़ मनानामो जारी नाहे कयो, जंहिं बाद उमीदवारनि जो रिकॉर्ड ॾिनो वियो। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में 3 ॼणा क़तल। हैदराबाद में पुराणी दुश्मनी तां हथियारबंदनि जो घर ते हमिलो, 1 ॼणो क़तल। नसीम नगर थाणे जे हद अली पैलेस वारी घिटीअ में हथियारबंदनि ज़हूर अली सोलंगी खे क़तल कयो। जेकबाबाद वासी नौजवान कराची में क़तल। चना पाड़े वासी नौजवान परवेज़ अहमद कटो खे शालती टाउन में क़तल कयो वियो। हिंगोजा वेझो खुर्द दौरान मज़ामत ते मुमताज़ मारवाड़ी क़तल। हिंगोजा पुलिस पारां फोरन जो पीछो करे ॿिनि जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण जी दावा। उमरकोट वेझो स्कूल जी भिति किरी पई, 3 ॿारियूं दॿिजी फौत। ॻोठ कमोरी में भिति किरण सबबि सोकरा धीउ अबू बकर, किंजा धीउ अब्दुल समद ऐं रायबा धीउ फारूक पोरी दॿिजी वियूं। ॻोठाणनि ॿारनि खे भिते था कढी सिविल अस्पताल उमरकोट पहुचायो, जिते डॉक्टर्स फौतकी जी तसदीक कई। ॿारनि जा लाश ज़रूरी कार्रवाई बाद वारस नवारे। ज़रई पाणीअ जी खोट ऐं चोरीअ ख़िलाफ़ नवाब शाह, टंडोबागो ऐं फैज़गंज में आबादगारनि जो एहतजाज। नवाब शाह में दौर तालके जे वनहड़ो ऐं सकरन शाख जे आबादगारनि जो पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज। पुछड़ी ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। टंडोबागो में नवमाणिक वाह जे आबादगारनि बदर चौक ते धरणो हुयो। फैज़गंज में अलीगंज शाख जे आबादगारनि एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। सदन चवणा आहे त वाहन ऐं शाखनि जी पुछड़ीअ में पाणी नाहे पहुतो, फसल सुकी रहिया आहिनि। पुछड़ीअ जे आबादगारनि जो मुआशी कतल बंदि कयो वञे। अवामी तहरीक पारां ॿारनि जी अॻवा ऐं पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाज। टंड मोहम्मद ख़ान जुडू ऐं तंगवाणी में मुज़ाहिरा। टंड मोहम्मद ख़ान में अलफताह चौक खां रैली कढी, प्रेस क्लब अॻियां एहतजाज कयो वियो। जुडू में एहतजाजी रैली कढी, बैंक चौक ते धरणो हयो वियो। तंगवाणी में कारकुननि एहतजाजी रैली कढी। अॻवाननि जो चवणु आहे त पाणीअ जी खोट सबबि गुरबत ऐं बेरोज़गारी में वाधि थी रही आहे। गुम थियल ॿारनि खे बाज़ियाब कराए सिंध खे पंहिंजे हिसे जो पाणी ॾिनो वञे। ऐं डिपलो में पीअण जे पाणी जो बहरान संगीन थी वियो। मुख़्तलिफ़ तंज़ीमुनि जो एहतजाज। अवामी तहरीक, जमात इस्लामी ऐं JUI जे कारकुननि बदीन रोड ते धरणो हुयो। अॻवाननि जो चवणु आहे त डिपलो वासियुनि खे ॿियूं सहूलियतूं त नथा ॾेई सघो, घटि में घटि पीअण जो पाणी त ॾियो। 3 महीननि खां मिठो पाणी नाहे मिलियो।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88.2 कमर्शियल।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते

0: खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधिक राबते जे लाइ 0300-3385-569 0300-3385-69
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320180003।

नौजवानी में जिल्द पर चिकनापन बढ़ जाता है और दाने नमूदार होने शुरू हो जाते हैं। पाउडर या फाउंडेशन लगाने से ये नुक्स आर्जी तौर पर तो छुप जाता है, मगर ये मसले का हल नहीं।

क्योंकि पाउडर या फाउंडेशन स्किन के पोर्स में भर जाता है। इसका ज्यादा इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, लिहाजा आप अपनी जिल्द को साफ सुथरा रखें। गैर मयारी और बिला जरूरत क्रीमें और मेकअप की दूसरी अशिया बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें।

दिन में कई बार चेहरे को ठंडे पानी से धोए ताकि गर्दों को बाहर निकल जाए और चेहरा तरोताजा हो जाए। आपको चाहिए कि अपनी स्किन की रंगत और नकुश को उभारने के लिए मेकअप की बुनियादी टेक्निक सीखें।

0: बुलेटिन जिंदगी की लहर GFM
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-2196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120

वो कौन सा बैग है जिसे इस्तेमाल करने के लिए गीला किया जाता है? इस सवाल के जवाब के लिए आपने डायल करना है 03136615688। इरफान अली बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू। और फातिमा आपने राइट आंसर भेजा है एसएमएस में, बहुत

अब वो कौन सा बैग है जिसे इस्तेमाल करने के लिए गीला किया जाता है? और हमारे लिसनर जो है ना, वो अभी तक इसके राइट आंसर तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन फातिमा ने हमें दुरुस्त आंसर एसएमएस पे

नायाब शो, और ये आई थिंक कबीर मल्ला का टेक्स्ट है, लिखो तो आप पर किताब, कहो तो आपको गुलाब। ओके, बहुत शुक्रिया आपका। और नेक्स्ट, नहीं जी नहीं, सेड तो नहीं, फातिमा।

वो इश्क कैसे करते हैं, मौजूदा दौर के हवाले से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लोग हवस को इश्क का नाम देते हैं, इश्क से इस चीज का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। इश्क तो ये है कि महबूब के अदब में जो है इंसान की निगाह भी उसकी जानिब ना हो, लेकिन जिस्मानी जरूरत को इश्क का नाम दे के लोग एक दूसरे के जज्बों से खेलते हैं। मैं इन चीजों को नहीं मानती। रियल इश्क की डेफिनेशन कुछ और होती है, जो कि मौजूदा जमाने में ना होने के बराबर है। प्रोग्राम के जब आखिर के 5-7 मिनट बाकी होते हैं उस वक्त क्यों याद आता है? कल भी आपने मुझे प्रोग्राम के लास्ट में कहा था मैडम आपदा जी प्ले कर दें, मैंने आज के प्रोग्राम में मैडम आपदा का सॉन्ग प्ले किया था। अब मैं दोबारा आज आपसे माजरत करूंगी क्योंकि 2 मिनट है अभी, आपका फरमाइशी सॉन्ग आज नहीं प्ले कर पाऊंगी। अगर कल प्रोग्राम किया तो कल प्ले कर देंगे।

नगरी में चलते जाना हसीन कलियां मचलते जाना, अंधेर नगरी में चलते जाना हसीन कलियां मचलते जाना, और अपनी फितरत पे मुस्कुराना, अगर मोहब्बत ही है जाना तो माफ करना मुझे नहीं है, तो माफ करना मुझे नहीं है।

0: सुनेंगे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
1: पाकिस्तान लाइ पाणी रुगो कुदरती वसीलो न पर ज़िंदगीअ जो मसलो आहे। हर सूरत में सिंतास वाइदे जो तहफ़ुज़ कयो वेंदो। पाकिस्तान जो पाणी रोकींदड़ खे भरपूर जवाब ॾिनो वेंदो। इस्लामाबाद में सिंतास वाइदे बाबति सेमिनार खे ख़िताब कंदे सिंध समाव वारे फाकी वज़ीर अताउल्ला तरण चयो आहे त सिंध तास वाइदे ते पाकिस्तान जो मौक़िफ़ वाज़ह आहे। सिंतास वाइदे खे ख़तम या इन में तरमीम नथी करे सघिजे। वफ़ाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक चयो त पाकिस्तान ने पंहिंजे हिसे जे पाणीअ ते को बि ठाह न कयो। सिंतास वाइदो दुनिया जे मज़बूत माहिदनि मां हिकु आहे। कंहिंखे बि इलाक़ाई ऐं आलमी अमन यरगमाल बणण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी।

ईरान सां ॻाल्हि लाइ अमरीकी नुमाइंदा दोहा पहुची विया। कतर पारां तस्दीक कतरी परडे॒ही वज़ारत जे तर्जुमान चयो आहे त अमरीकी नुमाइंदो स्टीव विटकॉफ ऐं जेरिड किश्नर दोहा में मौजूद आहिनि। संदन ईरानी अमलदारनि सां सिधी रीत मुलाक़ात न थींदी। अमरीकी नुमाइंदा सालिसी जो किरदार अदा कंदड़ धुरियनि सां मुलाक़ातूं कंदा, ॻाल्हियुनि दौरान थींदड़ अखबराई तहकारनि जी ॾे वठि कंदा। तेहरान जा मुंजबित कयल $6 अरब जा असासा बि अञा ईरान ॾांहुं मुंतकिल नाहिनि थिया।

0: ओमान अपनाए हुर्मुज ते बहरी जहाजन का ट्रांसिट फीस वठण जी मुखालफत करे छदी। अमानी परडेही वजीर बदर बिन हमद चयो आहे त आलमी बहरी रस्ते ता फीस उगाण जा हामी नाहियूं। माहौलियाती तहफ़ुज ए नेविगेशन बाबत सर्विस चार्जेस ते रज़ाकरणी नमूने गालियूं करे सघजनि थियूं।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूरु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

जी पथरीजो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851

अमन लाइ सिलेंडर नथो करे सघिजे। सिंतास माहिदे जो बरकरार रहण ज़रूरी आहे। सामूंडी रस्तनि ऐं आबी वसीलनि जो हथियार इस्तेमाल आलमी अमन लाइ ख़तरनाक आहे। इस्लामाबाद में सिंतास माहिदे बाबति सेमिनार खे ख़िताब कंदे बिलाल भुट्टो ज़रदारी चयो त सिंधु दरिया जो पाणी पाकिस्तान जी ज़िंदगीअ जी ज़मानत आहे। माहिदे जो तालुक कंहिं हिकु धुर सां नाहे, पाकिस्तान पाणी रोकण वारी कंहिं कोशिश जो भरपूर जवाब ॾींदो। सिंतास माहिदे जी बहाली खां सवाइ भारत ऐं पाकिस्तान विच में झटादार अमन मुमकिन नाहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जग जा विच न पोखण जो मशवरो ॾेई छॾियो। इस्लामाबाद में सिंतास माहिदे बाबति सेमिनार खे ख़िताब कंदे इसहाक़ डार चयो त पाकिस्तान आबी हक़नि ते कब्ज़ो क़बूल न कंदो। पाणी रोकण वारियुनि कोशिशुनि खे जंगी क़दम समझियो वेंदो। भारत ॾखण एशिया जे अमन ऐं इस्तेहकाम खे ख़तरे में न विझे। वफ़ाक़ी वज़ीर ताला तरण चयो त पाकिस्तान लाइ पाणी रुगो क़ुदरती वसीलो न पर ज़िंदगीअ जो मसइलो आहे। सिंतास माहिदे जो हर सूरत में तहफ़ुज़ कयो वेंदो। वफ़ाक़ी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक चयो त पाकिस्तान पंहिंजे हिसे जे पाणीअ ते को बिठा न कंदो। कंहिंखे बि इलाक़ाई ऐं आलमी अमन यरकमाल बणाइण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। ईरान सां ॻाल्हियुनि लाइ अमरीका नुमाइंदा दोहा पहुची विया। कतर पारां तस्दीक़ कतरी परडे॒ही वज़ारत जे तर्जुमान चयो आहे त अमरीकी नुमाइंदो स्टोविटकोफ ऐं जेरिड किश्नर दोहा में मौजूद आहिनि। संदनि ईरानी अमलदारनि सां सिधी रीत मुलाक़ात न थींदी। अमरीकी नुमाइंदा सालिसी जो किरदार अदा कंदड़ धुरियन सां मुलाक़ातूं कंदा। ॻाल्हियुनि दौरान थींदड़ अगभराई ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कंदा। तेहरान जा मुंजमिद कयल $6 अरब जा असासा बि अञा ईरान ॾांहुं मुंतकिल नाहिनि थिया।

0: सोलर है बैटरी।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई।
2: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601100।
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003।

प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।

0: अहिड़े तरीक़े सां असांजी क्लिनिक जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक जेकी गुज़िरियल जेको आहे सो 6-7 सालनि खां वठी अव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहे ऐं हिन वक़्तु जेको आहे सो जेकी क्लिनिक जी एड्रेस आहे उहा आहे वधण पोटा पेट्रोल पंप जे बिल्कुलु साम्हूं कोटड़ी रोड ते। टाइमिंग सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 6 बजे ताईं मौजूदु हूंदा आहियूं। ऐं अहिड़े तरीक़े सां जेके बीमारियुनि जे हवाले सां ॻाल्हि कयूं त हर क़िस्म जी जेकी मर्ज़ चऊं, बीमारी चऊं, या मिसाल हिकिड़ो तकलीफ़ चऊं उन हवाले सां, मिसाल गोॾनि जो सूरु, जिस्म जो सूरु, आर्थराइटिस या शाइटिका या ज़ाहिर के अहिड़ा केस हूंदा आहिनि जेके पेशेंट परेशान थी वेंदा आहिनि। मिसलनि पथरियूं आहिनि, स्टोन जूं पथरियूं थींदियूं आहिनि, यानी हिकिड़ियूं किडनी स्टोन्स थींदियूं आहिनि, गाल ब्लेडर स्टोन थींदियूं आहिनि, यानी पिते जी पथरी या गुर्दे जी पथरी, या जेको आहे सो इन्फेक्शन थी वेंदो आहे, UTI थी वेंदो आहे, प्रोस्टेट जो कंहिंसां मसइलो थी वेंदो आहे, कंहिं भेण सां जेको आहे सो ज़नाना अमराज़ हूंदा आहिनि, एक्नीज़ जो मसइलो हूंदो आहे, वारनि जो मसइलो हूंदो आहे, चमड़ी जो मसइलो हूंदो आहे, या जेको आहे सो ख़ारिश जे हवाले सां, उन खां अलावा कंहिंजी नक जी हॾी वधी वेंदी आहे, या गदूद थी वेंदा आहिनि, गले जा गदूद थी वेंदा आहिनि, उन्हनि जो मुकमल कामयाबु इलाजु बग़ैर ऑपरेशन जे, इन खां अलावा बवासीर जो बि मुकमल कामयाबु इलाजु बग़ैर ऑपरेशन जे ऐं बग़ैर कंहिं साइड इफेक्ट्स जे। छो जो होम्योपैथिक दवा हिकु बेज़र इलाजु आहे, बेज़र दवा आहे, हिन सां को बि साइड इफेक्ट न आहे। थोरो टाइम ज़रूरु लॻंदो आहे, कुझु टाइम जेको आहे सो ज़ाहिरी आहे त पेशेंट जॾहिं वेहंदा ईंदो आहे त उहो काफ़ी सारियूं दवाऊं वापराए ईंदो आहे ऐं काफ़ी सारो इलाजु कराए ईंदो आहे, पोइ ॼण हिकिड़े क़िस्म जो नाउमीद थींदो आहे। लेकिन जॾहिं होम्योपैथिक दवा इस्तेमालु थींदी आहे त हू पंहिंजो जेको आहे सो पहिरियों उन्हनि जा जेके दवाउनि जा साइड इफेक्ट्स हूंदा आहिनि उहा उहो ख़तमु कंदी आहे, पोइ उहो पंहिंजो वर्क कंदी आहे। अहिड़े तरीक़े सां पेशेंट खे जेको आहे सो शिफ़ा मिली वेंदी आहे। हिन प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि में जेको मौज़ूआत हूंदा आहिनि, मुख़्तलिफ़ मौज़ूआत असां खणी ईंदा आहियूं ऐं सिर्फ़ु उहो जीअं त हीउ प्रोग्राम असांजो अवेयरनेस एज़ अ अवेयरनेस तौर ते हूंदो आहे, यानी हिकिड़ी नंढी ॼाण मरीज़ ताईं पहुचाईंदा आहियूं कंहिं बि बीमारी जे बारे में या सौगातुनि जे बारे में, त हू पेशंट उन्हनि खे सम्झे, ॾिसे ऐं उनखां पोइ जेको आहे सो का बि अहिड़ी बीमारी थिए थी त हू उनखे सम्झी वञे ऐं उन डॉक्टर वटि उते पहुची वञे, उहो इलाज कराए सघे। अॼुकल्ह तव्हां ॾिठो हूंदो जेके अॼुकल्ह जा मर्द
1: ख़ूबसूरतीअ जो असल राज़ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, हिन में मौजूद वाइटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ़ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़रिए।
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो GFM
0: 94। पेशंट्स में महिल ताईं ॿुधाईंदा आहियूं त कम उहे वरी बि असांखे कुदरती पंहिंजी शयूं ईंदियूं आहिनि। मिसलनि हाणे जेकॾहिं को बि मसइलो हूंदो आहे त असां कुदरती हवा, छो जो अॻे तव्हां ॾिसंदो त हिन वक़्तु त तमामु घणियूं फैसिलिटीज़ आहिनि त मेडिसिन्स मिसाल हिकिड़ो प्रिपेयर थियनि थियूं, अचनि थियूं, या जेको आहे माण्हू हॉस्पिटलाइज़ थिए थो, एमरजेंसी में इंजेक्टेबल थिए थी, या इवन जेको आहे अहिड़ो मसइलो आहे त सर्जरी बि थिए थी। लेकिन अवां खे बुधी खुशी थींदी त असां वटि होम्योपैथिक में अहिड़ियूं दवाऊं जेके आहिनि जेके बग़ैर इंजेक्शन जे असरात कंदियूं आहिनि, बग़ैर सर्जरी जे जेकी जेकॾहिं पथरी आहे त उहा निकिरी ईंदी आहे, बग़ैर कंहिं जेको आहे सो इंजेक्शन जे कोर्स जे जेको आहे सो कोर्स थींदा आहिनि कहिड़ी बि वॾियुनि बीमारियुनि जा। अहिड़े तरीक़े सां जेकॾहिं मां ॻाल्हि पई कई त गर्मी वधी वई आहे ऐं हिन गर्मी में जेको आहे सो लू लॻंदी आहे ऐं इन

0: जानकारियुनि बाबति ॼाण ॾेई रहिया आहिनि। तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल शामिल थी सघो था 0301-91-8051 0301-91-8051। प्रोग्राम में कुझु व्यूज़ हूंदा आहिनि, उहे बि शामिलु कंदा हलंदासीं। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहिबु, सीनियर लेक्चरर, नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ऐं इस्पताल नवाब शाह, जेकी मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾेई रहिया आहिनि। लाइव कॉल जो नंबर 0301-91-8051। तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं, डॉक्टर साहिबु हर अरबा, ख़मीस, जुमो, छंछरु, आचर ऐं सूमर ते सुबुह जो 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप, कोटली कबीर रोड, महरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। हिकु दोस्त आहे जेके सिहत याब थी वञनि था, उहे क्लिनिक ते अचा ईंदा आहिनि या अक्सर करे प्रोग्राम में माण्हू कॉल करे चवंदा आहिनि, साईं असीं मेडिसिन वठी आयासीं डॉक्टर साहिब खां, ॾाढो असांखे शिफ़ा मिली ऐं असीं सिहत याब थी विया आहियूं ऐं हाणे अलहमदिल्ला ठीकु आहियूं। ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे असांखे जॾहिं मरीज़ सिहत याब थी वञनि था। ईअं ई हिकु दोस्त क्लिनिक ते आयो ऐं व्यूज़ ॾेई वियो त ऐं अलहमदिल्ला अलाह ताला जे हुकुम सां ठीकु आहियां ऐं काफ़ी जन तां इलाजु करायो। सो उन जा अचो सभई गॾिजी करे व्यूज़ ॿुधूं था।
1: सर मुंहिंजो पंहिंजो मसलो हुयो जेरे जो ऐं मादे जो, गैस्ट्रो जो मसलो हुयो,
2: जिगर जो, मादे जो, गैस्ट्रिक जो मसलो हुयो, लिवर प्रॉब्लम हुयो।
1: जी जी सर, इहो मसलो हुयो। हुन खां अलावा सर मां तक़रीबन 3 सालनि में मुबतला आहियां नंबर में। मां सर 3 साल में गंभट मुंहुं दवा थी आहे प्रोफेसर डॉक्टर ज़हीर हुसैन शाह साहब खां बि।
2: जी जी।
1: हुन खां अलावा सर मां पंहिंजी मुख़्तलिफ़ दवाऊं जॻहियुनि तां वरितियूं आहिनि। हुन मां सर हेरा मां मुंहुं वरिती आहे 2 दफ़ा ट्रेन। पर किथां सर मूंखे को फ़ाइदो कोन थियो। मूंखे डॉक्टर तक़रीबन ला इलाज करे छॾियो, पंहिंजो इलाज न थियो।
2: जी जी।
1: जेको नॉर्मल दवा खाईंदो आहे अहिड़ो ख़ासि असांजी कोन।
2: जी जी।
1: अलहमदिल्ला सर अलाह जे हुकुम सां हिते साईं अरन वटि जो असांजो ॾसु मिलियो, असां हिते आयासीं। पहिरियों दफ़ा वरिती आहे
2: मेहरापुर शहर,
1: मेहरापुर शहर
2: जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक,
1: जर्मन होम्योपैथिक डॉक्टर मंज़ूर सिंधमल साहब।
2: जी सर।
1: हिते सर मां फस्ट टाइम आहियां। अलहमदिल्ला अलाह जे हुकुम सां मूंखे 100% फ़ाइदो थियो आहे।
2: तक़रीबन जेको आहे सो महीनो अॻे दवा वरिती
1: आहे। जी सर, महीनो अॻु मां दवा वरिती आहे।
2: महीनो दवा इस्तेमालु कई, जर्मनी जी दवा तव्हांखे।
1: जी जी सर, जर्मनी दवा ॾिनी। हाणे अलहमदिल्ला मां 100% मना मां ॿियो दफ़ो साईं हिन वटि आयो
2: आहियां। तकलीफ़ हूंदी त तव्हांखे निंड आराम या बि ईंदो
1: सर? असांखे तक़रीबन 6 महीना पहिरियां मां निंड न कई आहे, 24 कलाक जाॻियल हूंदो आहे। अलहमदिल्ला हाणे मूंखे निंड पूरी आहे, जेको माना टेंशन हूंदो हुयो सॼो बीमार जे करे दूरि थी आहे। अलहमदिल्ला मां साइकेट्रिस्ट खे बि चेक कराए, पर हुननि बि माना मूंखे इलाज करे छॾियो।
2: साइकेट्रिस्ट खे बि ॾेखारियो।
1: जी जी।
2: फिज़िशियंस खे ॾेखारियो ऐं फ़र्क़ु नेरो वारे खे ॾेखारियो, तव्हांखे फ़र्क़ु कोन पियो।
1: कोन पियो।
2: अलहमदिल्ला जर्मनी जी होम्योपैथिक दवा तव्हां मेहरापुर मां असांखे वरिती आहे। तव्हांखे माशा अलाह हिन वक़्तु 80% फ़ाइदो आहे। मुतमिन आहियो तव्हां ॿियनि ॿुधंदड़नि जे लाइ कहिड़ो पैगाम ॾींदो?
1: सॼी संगत खे इहो अर्ज़ु कंदा रहियो आहे, हिकिड़ो साईं अर नटो अचो इनशाला सफ़ा अलाह जे हथ में आहे। असां 100% मां मेडिकल स्पेशलिस्ट, नेरो सर्जन, गैस्ट्रो, को बि अलहमदिल्ला पंहिंजी सखर डिवीज़न या तालके मेहरापुर में या अॻिते किथे को बि न सॼो चङा मुंहिंजो आना थी आहे। अलहमदिल्ला मां 100% मुतमिन आहियां ऐं साईं अरनि खे संगत वारनि खे पुछंदा आहिनि की कहिड़ी अर्ज़ु कंदा, हिकिड़ो साईं अरनि अचो इनशाला अलाह जे हुकुम सां तव्हांजा कहिड़ा पार थी विया।
2: जी बिल्कुलु।
0: डॉक्टर साहिबु तमामु बहितरीन, त ॾिसो माना 80% हिकिड़ो अधे खे रिज़ल्ट मिलियो आहे।
3: जी साईं बिल्कुलु।
0: त अहिड़ा जेके मरीज़ आहिनि वीचारा इलाही काफ़ी ॾिसो परेशान रहनि था। हाणे हीउ अधो बि चइबो माना 6 महीना मां निंड ई न ईंदी हुई। ज़ाहिर आहे हेॾी हुनखे हेॾी सारी वॾी बीमारी जहिड़े जी ऐं अक्सर अॼु फस्ट टाइम न थियो आहे जो गंभट जा पेशंट हुतां लाइलाज थी अचनि वरी तव्हां वटि आया हुजनि, अॻु में बि ईंदड़ आहिनि। ॾिसो।
3: जी साईं बिल्कुलु, असां इहा ॻाल्हि नोट कराईंदा रहंदा आहियूं ऐं हिकिड़ी ॻाल्हि बि
0: ॾिसो, सखर जे हिन हिकिड़ी वॾी इस्पताल जो नालो खयों।
3: जी।
0: ॾिसो अक्सर करे जेके मरी उते वञनि था, उहो सिंधी में वरी ईअं बि चवंदा आहिनि ऐं उन में न वेंदुसि की वरी कोसगर बि चवंदा आहिनि हुनखे। पर ॾिसो माना अहिड़ा इदारा त आहिनि, उते डॉक्टर त वेठा आहिनि, पर ॾिसो प्रॉपर हुनजो इलाजु माना कवर थियणु घुरिजे पेशंट। बाक़ी शिफ़ा ॾियण वारी अलाह साईं जी ज़ात आहे, मुमकिन आहे ईअं बि आहे।
3: बिल्कुलु। असां बि इहा ॻाल्हि कंदा आहियूं त शिफ़ा ॾियणु रब ताला जो जेको आहे कमु आहे। इहो ज़रूरी न आहे त कहिड़े बि डॉक्टर वटां शिफ़ा मिले। ऐं जीअं कॾहिं ॿियो हिकिड़ो घणनि मरीज़नि खे हिकिड़ो गुमान हूंदो आहे त भई तव्हां चयो त 3 महीना असां ट्रीटमेंट कंदासीं ऐं असां ठीकु थी वेंदासीं,

अमन लाइ सिलेंडर नथो करे सघजे। सिंतास माहिदे जो बरकरार रहण ज़रूरी आहे। सामूंडी रस्तनि ऐं आबी वसीलनि जो हथियार इस्तेमाल आलमी अमन लाइ ख़तरनाक आहे। इस्लामाबाद में सिंतास माहिदे बाबति सेमिनार खे ख़िताब कंदे बिलाल भुट्टो ज़रदारी चयो त सिंधु दरिया जो पाणी पाकिस्तान जी ज़िंदगीअ जी ज़मानत आहे। माहिदे जो तालुक कंहिं हिकु धुर सां नाहे, पाकिस्तान पाणी रोकण वारी कंहिं कोशिश जो भरपूर जवाब ॾींदो। सिंतास माहिदे जी बहाली खां सवाइ भारत ऐं पाकिस्तान विच में जटादार अमन मुमकिन नाहे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार जंग जा विज न पोखण जो मशवरो ॾेई छॾियो। इस्लामाबाद में सिंतास माहिदे बाबति सेमिनार खे ख़िताब कंदे इसहाक़ डार चयो त पाकिस्तान आबी हक़नि ते कब्ज़ो क़बूल न कंदो। पाणी रोकण वारनि कोशिशुनि खे जंगी कदम समझो वेंदो। भारत ॾखण एशिया जे अमन ऐं इस्तेहकाम खे ख़तरे में न विझे। वफ़ाक़ी वज़ीर अताउल्ला तारण चयो त पाकिस्तान लाइ पाणी रुगो क़ुदरती वसीलो न पर ज़िंदगी जो मसइलो आहे। सिंतास माहिदे जो हर सूरत में तहफ़ुज़ कयो वेंदो। वफ़ाक़ी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक चयो त पाकिस्तान पंहिंजे हिसे जे पाणीअ ते को बि ठाह न कंदो। कंहिंखे बि इलाक़ाई ऐं आलमी अमन यरकबाल पाइण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आबादी ते कंट्रोल लाइ नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल क़ाइम करण जी हिदायत। वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि मुल्की आबादी बाबति इजलास थियो। शहबाज शरीफ चयो त वधंदड़ आबादी मुल्की तरक़ी ॾाढो वॾो चैलेंज आहे। वधंदड़ आबादी सबबि क़ौमी वसीलनि ते दबाउ वधी रहियो आहे। जटादार तरक़ी लाइ आबादी में तवाज़ुन ज़रूरी आहे।

0: ऐं नंगर पार भरिसां मुबैया तौर नारी अगवा जिंसी ज़्यादती जो शिकार ॻोठ रामू जो वांडियो जे रवासी 14 सालनि जी नारी खे मुबैया तौर चार जवाबदारनि अगवा करे जिंसी ॾाढे जो निशानो बणायो। नारी इस्पताल दाख़िल। मुतासिर नारी जे वालिद इल्ज़ाम हेठि आयल चार ॼणनि ख़िलाफ़ थाणे ते रिपोर्ट दाख़िल कराए छॾी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3583-569-0300-3859।

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301 2196 851।

0: ऐं कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-003।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-00-27234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460100।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा।
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 0301-399-2836।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300 3385 569 0300 3885 69।

0: जॻहि जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर। एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास, नज़्द रेलवे लाइन, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।

0: ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस: रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-33-8569।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 91 896

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94।